मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की

0: सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज किसान भाइयों को करेले की खेती के विषय में जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम करेला की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सफल खेती के लिए ज़रूरी है सही भूमि का चुनाव। आमतौर पर इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत तैयार करते समय यह देख लें कि उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं। अगर नमी की कमी है तो पलेवा दे करके यह कार्य करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, फिर बाद की 3-4 जुताइयां देसी हल से करनी चाहिए। तत्पश्चात पिछली फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकालकर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। खेत की तैयारी के समय लगभग 250 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति बीघा की दर से आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया की 1/3 मात्रा तथा डाइअमोनियम फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग कर देना चाहिए। बची हुई यूरिया की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसे 2 बार में, पहली मात्रा जब करेला में 3-4 पत्तियाँ आ जाएँ तब तथा दूसरी मात्ा जब उसमें फूल निकल रहे हों तो देना चाहिए। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तब बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए 3 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्नतशील किस्म, दूसरा बीज की सही मात्रा और तीसरा बुआई का सही तरीका। जहाँ तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर 12 मासी, अर्का हरित और फैजाबादी करेला इसकी उन्नतशील किस्में हैं। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी संपर्क करके आप अच्छी प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 बीघा खेत में करेला की बुआई कर रहे हैं तो 1-2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि 4-8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तैयार खेत में 2 मीटर की दूरी पर 40-45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। अब नाली के दोनों तरफ जो मेड़ बनती है उस मेड़ की ढाल पर बीज बोते हैं। लाइनों में बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा बीज की गहराई 2-3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक स्थान पर 2-3 बीज डाले जाएँ। अब बात आती है इस फसल की देखभाल की, और देखभाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सिंचाई का। क्योंकि यह गर्मी की फसल है अतः खेत में नमी जल्दी उड़ जाती है। इसके लिए प्रत्येक 6-7

0: अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में निकाई गुड़ाई करके उसमें से खरपतवार निकाल देते हैं। इससे खेत में नमी संरक्षित रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। करेला की फसल में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है, जिसको समय रहते नियंत्रित करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि करेला की खेती करते हैं तो प्रति बीघा लगभग 40 कुंटल, कहने का मतलब ये कि लगभग 150 से 160 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार इससे मिल जाती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेला की खेती करनी चाहिए।
1: करेला की खेती, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 6:10 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और विश्वास है। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भक्ति केवल मंदिरों की चौखट तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि हर उस कर्म में है जो निस्वार्थ भाव और प्रेम से किया जाए। इसीलिए हमारे कर्म ही हमारी सबसे सुंदर प्रार्थना बन सकते हैं।

प्रार्थना शब्दों से नहीं वरन भावों से होती है। सच्चे मन की पुकार यानी मौन प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। कहते हैं जिस हृदय में करुणा क्षमा और प्रेम का वास है ईश्वर का वास्तविक निवास वही है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना के अंतर्गत आज आपने शोभा गुड्डू, पंडित भीमसेन जोशी और अनूप जलोटा की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। हमारी आज की आराधना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब सुनिए विचार बिंदु। आज का विषय है आत्मनिर्भरता।
1: कई बार पराजित होकर निराश राजा ब्रूस एक गुफा में चुपचाप लेटा था। उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है और गिर पड़ती है। राजा देखता रहा, मकड़ी चढ़ती गिरती रही। अंत में मकड़ी अपने प्रयत्न में सफल हो ही गई और चढ़ते चढ़ते छत पर पहुंच गई। राजा ब्रूस को मकड़ी की इस सफलता से आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का गुरु मंत्र मिल गया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण किया और इस बार वो विजयी हो ही गया। आत्मनिर्भरता का अर्थ है पर निर्भर होना। वो किसी पर आश्रित नहीं होता, अपने कार्य के लिए दूसरे का मुंह नहीं देखता, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। नेपोलियन ने कहा था, असंभव कोई शब्द होता ही नहीं। एक लकड़हारे के बेटे अब्राहम लिंकन आत्मनिर्भरता के बल पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी आदि महापुरुषों का जीवन आत्मनिर्भरता का पर्याय है। आत्मनिर्भरता सच्चे पुरुषार्थ को जन्म देती है। जो पुरुषार्थी हैं, सफलता उन्हीं का वर्ण करती है। स्वावलंबन से व्यक्ति उत्साही, पराक्रमी, निर्भीक और धैर्यवान बनता है। सिकंदर ने बंदी पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने कहा, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये थी पोरस की चारित्रिक दृढ़ता। एक बार एक पथिक थका हुआ, भूख प्यास से व्याकुल पेड़ के नीचे बैठा था। उधर से जाते हुए दूसरे पथिक ने पूछा, मित्र, तुम इस तरह व्याकुल भ्रमित क्यों हो? पथिक ने उत्तर दिया, मेरे पास दो गठरियां थीं, वे कहीं खो गई हैं। उसने पूछा, उन गठरियों में क्या था? पथिक ने उत्तर दिया, दृढ़ता और संकल्प, ये दोनों उन गठरियों में थे। उन्हीं के खो जाने से मैं दिशा भ्रमित हो गया हूं। इस बार दूसरे पथिक ने एक गठरी उसे पकड़ाते हुए कहा,

0: इस गठरी में है आत्मनिर्भरता। इसके रहते तुम कभी भी पथ से डिग नहीं सकोगे, तुम्हें अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। सच है, बिना आत्मनिर्भरता के सफल जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश।
1: आत्मनिर्भरता, अभी आप सुन रही थी विचार बिंदु के अंतर्गत ये कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है, अतः ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें और अपने साथ ही अन्य लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। वृक्ष हैं तभी तो जीवन संभव है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज बच्चों में सर्दी के कारण, लक्षण और बचाव विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वी के शुक्ला। आज सुनिए इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, जितना बच्चा छोटा होता है उसको सर्दी लगने के चांसेस उतने ज्यादा होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है कि हमको ठंडा लग रहा है, हमको गर्म कपड़ा पहना दो, हमको उड़ा दो, हमको ढक के रख। तो इसलिए जो बच्चे पैदा हो गए रहते हैं, न्यू बॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं, उससे लेकर 2 साल तक के बच्चों का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उससे ऊपर के बच्चों का अलग। बच्चों को सबसे पहले तो उनका कान मोजा पहनाना है, जूता पहनाने हैं और हाथ में ग्लव्स पहनाने हैं, और मैक्सिमम मुंह का पार्ट कवर रहे, आंख और नाक और मुंह एक खुला रहे। बाहर में पहले तो पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, वो पानी या तो बॉयल करके पिए जहाँ, या तो बिस्लरी का पानी पिए। हर जगह का पानी नल का ये कभी न पिए, पानी से ही मैक्सिमम इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे डायरिया हो, टाइफाइड हो, चीजें हो। उसके बाद खाने में विशेष ध्यान रखें, जो स्ट्रीट फूड्स हैं उसको कभी न दें बच्चे को। उसको देने से ये रहता है कि बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस, पेट के टट्टी है, उल्टी है, ये सब डायरिया शुरू हो जाते हैं। हम चूंकि बनारस में गोदुलिया पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो ज्यादातर होटलों में रुकते हैं और यहीं बच्चों को लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर टट्टी हो रहा है, उल्टी हो रहा है। तो फूड पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, बल्कि घर से कुछ होम मेड फूड बना कर ले जाएं वो ज्यादा अच्छा है, और बजाय जो होटल के जो स्पाइसी फूड हैं, तेल घी चिकना और ये सब चीजें, इसको उनको अवॉइड करना चाहिए। डायरिया और उल्टी के लिए तो सबसे अच्छा है ORS, अगर घर में है इलेक्ट्रॉल पानी में डाल के पिलाएं, नहीं तो नमक, चीनी, नींबू और पानी एक एक चिटकी सब एक गिलास में डाल लें और थोड़ा सा नींबू डाल दें। नींबू न मिले तो केवल नमक, चीनी और पानी का घोल ही एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, क्योंकि उल्टी हो रहा है, एक बार ज़्यादा पिला देंगे तो ज़्यादा तेजी से और उल्टी कर देगा। अगर थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चम्मच हर 2-3 मिनट फ्रिक्वेंटली उसको देते रहिए। दूसरा चीज, उसको जो है आप दही का है, मट्ठा है, छाछ है, ये सब उसको दीजिए। दाल का पानी है, नारियल पानी अगर मिल जाए तो ये सब दे सकते हैं, डायरिया में सबसे बेस्ट दवा से भी बेस्ट होता है। और अगर निमोनिया है तो उसको एकदम बंद कमरे में ना रखें। यूजली होता क्या है, लोग सोचते हैं सांस फूल रहा है, खांसी आ रहा है, कमरा बंद कर दिए, उसी में अंगीठी भी जला दिए, तो ये नहीं। उसको क्रॉस वेंटिलेशन रूम में होना चाहिए, प्रॉपर हवा आना चाहिए, तकिया लगा देना चाहिए उसके सिरहाने, जिससे कि उसका लंग्स जो है उसके तकिया के लेवल से ऊपर रहे, तो उससे सांस लेने में उसको। बच्चा अगर ज्यादा रो रहा है तो उसको कंधे पर लेकर थोड़ा सा पीठ उसका थपथपा कर थोड़ा सा घुमा दें, लेकिन ओपन एयर में, बंद जगह में उसको फिर निमोनिया के बच्चे को कभी ना रखें। ये पानी रख दें वो भी ठीक है कि रूम की ह्यूमिडिटी रहेगी, एयर ड्राई नहीं होगा। वैसे उससे भी बेस्ट होता है कि दो तरफ क्रॉस में थोड़ा थोड़ा रूम खोल दें। मान लीजिए एक तरफ खिड़की आपने 4 अंगुल खोल दिया दरवाजा, या दूसरी तरफ भी खिड़की है तो वो भी 4 अंगुल खोल दिया, तो जो हवा है ये गर्म हवा बाहर जाएगी और फ्रेश हवा बाहर से आएगी, तो

0: ये ड्राई एयर नहीं मिलेगा बच्चे को, तो उसका गला है, उसके ट्रेकिया है, बैंक ब्रॉन्कल लाइट्स हैं, ये सब सूखेंगे नहीं, तो बच्चा प्रॉपर आराम से सांस लेता रहेगा। तो उसको ढक कर रखना है, कपड़े पहना कर रखना है, पानी गर्म देना है, खाना ताजा देना है, और खेल कूद जो भी करे वो, अगर ठंडा है तो उसको बाहर ना खेलने दे, वो अपना घर में ही खेल ले। उसके अलावा बच्चा अगर एनीमिया बहुत बड़ा कारण होता है निमोनिया के लिए, जो है बच्चे को हीमोग्लोबिन कम है, फट से उसको सर्दी पकड़ लेता है, तो अगर बच्चा एनीमिक है तो उसको खाने पीने में बहुत ध्यान रखें। आयरन सप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आपका इस समय मिल रहा है और सबको दिया भी जा रहा है, तो इस पर ध्यान दें, बीच बीच पे चेक करा लें कि अगर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो बच्चे को जो है, अगर आयरन और हीमोग्लोबिन प्रॉपर मेंटेन है बच्चे का, तो ये सब निमोनिया वगैरह के चांसेस होने के बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बच्चे हीमोग्लोबिन है तो बच्चों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये सब चीजें निमोनिया से बच्चे को बहुत बचाती है। धन्यवाद।
1: बच्चों में सर्दी के कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर अभी जानकारी दे रही थी डॉक्टर बीके शुक्ला। स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी की गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और साथी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10:30 से खेल की समाप्ति तक। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम सुनिएगा दिल्ली केंद्र से ही शाम 4 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन और इसी कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे संजीव अभ्यंकर का गायन। दिव्यांश द्विवेदी के गाए गीत और भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे और साथ ही दोपहर 12:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर जिसमें किसान भाई चर्चा और विश्वनाथ व साथियों के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे पशुओं में लंबी बीमारी कारण लक्षण और बचाव विषय पर मोहम्मद मुदस्सिर अली से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे सुनिएगा अवधि लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर और सुबह 9:50 पर हम आपको सुनवाएंगे विश्वनाथ और साथियों के गाए लोकगीत। दिन में 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी शैलेश चौरसिया से की गई बातचीत। विषय होगा मोबाइल सुविधा या सेहत का दुश्मन। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12 बजे। श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशां सुनिएगा दिन में 2:30 पर और अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 8:45 पर सुनिएगा मधुरिमा, सुबह 10 बजे झंकार, शाम 7:31 पर रसमाधुरी,

0: रात्रि 8:15, शाम 7:31 पर रसरंग, रात्रि 8:15 पर रस माधुरी। साथ ही फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे। श्रोताओं, आपको पुनः बता दें, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10:30 से खेल की समाप्ति तक। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित होगा शाम 4 बजे। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.5 अंतर्गतम वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः

नमस्कार बनारस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? घाटों पे गंगा मैया की आरती की सुगंध जो अभी तक हवाओं में बसी है, सुबह बनारस की वो अलौकिक लाली, इन सब के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शिखा। दोस्तों, आज तारीख है 2 जुलाई। आज साल का ठीक बीच का दिन है, यानी इस साल का आधा समय हम बिता चुके हैं और इतना ही समय अभी इस साल में और भी है। ये दिन हमें ठहर कर सोचने का मौका देता है। जनवरी में हमने जो संकल्प लिए थे, खुद से जो वादे किए थे, क्या हम उन तक पहुंच पाए? अगर जवाब ना है तो उदास मत होइए। बनारस तो वो शहर है जो कभी हार मानना नहीं सिखाता। यहाँ तो बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा है कि हर परिस्थिति से घिरा हुआ इंसान फिर से उठ खड़ा होता है। और अगर साल का फर्स्ट हाफ उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो क्या हुआ? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, आज से साल का दूसरा हाफ शुरू हो रहा है। इतिहास गवाह है, बाजी वही जीतता है जो आखिरी लम्हों में पूरी ताकत लगा देता है। जरूरत बस इच्छा शक्ति की है। इसी बनारस की मिट्टी में कबीर दास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक हमारा मन अडिग है, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। दोस्तों, बनारसी मिजाज की सबसे बड़ी खासियत क्या है भला? अल्हड़पन और खुश मिजाजी। हम वो हैं जो लंगड़ा आम खा के भी खुश हो जाते हैं और चाय की अड़ी पर पूरी दुनिया की राजनीति सुलझा देते हैं। हमारे पास वो जज्बा है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी अरे गुरु देख लिया जाए कहकर मुस्कुराते हुए टाल देता है। इसी जज्बे को अपने अंदर हमेशा जगाए रखिए। अब कुछ ऐसी बातें जो हमारे देश और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। कल से यानी 1 जुलाई से वन महोत्सव सप्ताह शुरू हो चुका है जो 7 जुलाई तक चलेगा। इस मानसूनी मौसम में जब मिट्टी पानी के लिए तरस रही थी, तो क्यों ना हम सब बनारस को और हरा भरा बनाने का संकल्प लें। घाटों की खूबसूरती के साथ साथ अगर हर बनारसी एक पौधा लगाए और उसकी सेवा करे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें दुआ देंगी। इसी सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा खूबसूरत गीत जो आपकी इस खुशगवार सुबह को और भी खूबसूरत बना देगा।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, आकाशवाणी वाराणसी के संग। भाई, रात को जो बादल झूम के बरसे हैं ना, पूरे शहर का मिजाज ही बदल गया है और मॉनसून ने बनारस में एंट्री कर दी है। काशी की हवा में वो मिट्टी की सौंधी महक घुल गई है। इस बदले हुए सुहाने मौसम में एक अलग ही सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद ये संदेश दिया हो, चलिए उठिए, खिड़कियां खोलिए और इस सुहाने मौसम का आनंद लीजिए। इस बारिश ने हमारे पेड़ पौधों में भी रौनक बढ़ा दी है। सारी प्रकृति हरी भरी चमक रही है। और क्यों ना चमके, जुलाई का महीना है और पूरे देश के साथ हमारे बनारस में भी वन महोत्सव का जश्न शुरू हो चुका है। लेकिन रुकिए, बारिश का मौसम अपने साथ थोड़ी नमी भी लाता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी लाता है। तो चलिए इस रिफ्रेशिंग मॉर्निंग को बनाते हैं और भी खास, थोड़ी जानकारी और ढेर सारे हैक्स के साथ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। भाई, मौसम तो सुहाना हो ही गया है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारी काशी को और ज्यादा हरा भरा बनाने की और इस बारिश के मौसम को स्मूथली एंजॉय करने की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार सरकारी दफ्तरों से लेकर हमारी गलियों तक कुछ बड़े और नए काम हो रहे हैं। आम बहार आपके द्वार, जी हाँ, ये कैंपेन चलाया जा रहा है हमारी यूपी सरकार की ओर से। यूपी सरकार का एकदम नया तोहफा, इस वन महोत्सव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर डेवलपमेंट ब्लॉक पर आम भंडारा ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब आम भंडारा के नाम पे आप ये मत सोचिएगा

कि वहाँ पर आम का भंडारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार आपको घर पर लगाने के लिए देसी और ग्राफ्टेड आम के पौधे बिल्कुल फ्री बांट रही है। तो अपने लोकल ब्लॉक ऑफिस या नर्सरी का चक्कर जरूर लगाइए और अपना आम का पौधा घर ले आइए। इस साल सरकार ने पूरे स्टेट में 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। और सबसे स्मार्ट बात, हर एक पौधे की QR कोड मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग हो रही है, ताकि पौधा बड़ा हो रहा है या नहीं इसका पूरा हिसाब रहे। हमारे बनारस के सूजाबाद डोमरी इलाके में 1 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। जापान की मियावाकी टेक्निक से बन रहे इस अर्बन फॉरेस्ट का नाम नमो वन है, जहां हर एक जोन का नाम हमारी काशी के प्रसिद्ध गंगा घाटों के नाम पर रखा गया है। तो हमारी काशी को अब एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन बैंक मिल चुका है। अब इस बारिश के मौसम में कुछ सिंपल, छोटे लेकिन बहुत ही काम के हैक्स। दोस्तों, रात को बारिश हुई है तो मौसम बदला है, पर हमारे घरों में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं बारिश की वजह से, जैसे कि नमी, सीलन। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सिंपल से छोटे छोटे से हैक्स जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। पहला हैक जो है वो बहुत ही ज्यादा काम का है और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। रात की बारिश की वजह से मिट्टी एकदम नरम और गीली है। आज सुबह अगर आप कोई पौधा लगाते हैं या जो फ्री में आम का पौधा आप लाएंगे उसे मिट्टी में डालते हैं, तो उसके मिट्टी में पकड़ने का और ग्रो करने का चांस 100% हो जाता है। आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन चल रहा है, तो आज की नरम मिट्टी का फायदा उठाइए और एक पौधा जरूर लगाइए। अगला जो हैक है वो ये है कि अगर रात को बाहर से आते वक्त बारिश में आपके स्पोर्ट शूज भीग गए हैं या फिर स्कूल के जूते भीग गए हैं और आज सुबह उनमें से अजीब सी महक आ रही है, तो उन्हें धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी धूप तो शायद ही आज निकले। तो इसके लिए सिंपल सा हैक ये है कि आप बस अपने पुराने जो अखबार है ना, उनको अपने जूतों के अंदर टाइटली भर दीजिए। अखबार सारी नमी और स्मेल को सोख लेगा और जूते एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अगला जो हैक है वो कपड़ों की सीलन से थोड़ा सा रिलेटेड है। मौसम बदला है तो अलमारियों में सीलन आने लगती है और कपड़ों से अजीब सी स्मेल आती है। एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है इसके लिए कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली जो चौक होती है ना, उसके 4-5 टुकड़े एक छोटे से कपड़े में बांध कर आप अगर अपनी अलमारियों के कोने में रख देंगे ना, तो चौक सारी एक्स्ट्रा नमी को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे। बारिश के समय हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं ना, तो इसके लिए जो हैक है हमारे पास वो ये है कि अपने घर के बाहर थोड़े से पानी में नीम का तेल मिलाकर अगर आप छिड़क देंगे ना, तो मच्छर दूर ही रहेंगे। तो दोस्तों, काशी को हरा भरा बनाने के इस जोश और इन मजेदार हैक्स के साथ चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं अपने शहर बनारस का हालचाल। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UP टेट 2 जुलाई से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि इस बार पूरे प्रदेश में वाराणसी में सबसे अधिक 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और नकलविहीन परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि जाम से बचने के लिए समय से घर से निकलें। पूर्वांचल के भाई बहनों को सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी और गोरखपुर के बीच स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलाई हैं। गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन 05150 आज सुबह 7:15 पर बनारस पहुंच चुकी है और ये सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा।
मौसम विभाग की माने तो मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। पिछले दो दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और बुधवार को हुई हल्की फुहारों ने गर्मी से राहत भी

दे दी है। आज भी अगले 24 घंटों में शहर में अच्छी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज जब आप घर से निकले ना, तो छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सावन का महीना शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अभी से कमर कस ली है। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ किया है कि इस बार सावन के सभी सोमवार को वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। भीड़ को संभालने के लिए महाकुंभ की तर्ज पर 5 अलग अलग प्रवेश मार्ग बनाए जा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसरों के लिए एक बेहतरीन खबर है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बीएचयू प्रशासन ने वाराणसी स्मार्ट सिटी के साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत बहुत ही जल्द पूरे कैंपस में ई बाइक और बाइसाइकिल शेयरिंग फैसिलिटी शुरू होने जा रही है। अब पढ़ाई के साथ साथ सेहत और पर्यावरण दोनों ही स्मार्ट होंगे। तो ये था हमारे शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं इतिहास में 2 जुलाई की खासियत। 2 जुलाई का इतिहास भारत और विश्व स्तर पर कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और खेल से जुड़ी घटनाओं का साक्षी रहा है। मुख्य रूप से इसी दिन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 के युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे आज के ही दिन। 1757 में बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत का एक बड़ा कारण माना जाता है। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता से गिरफ्तार किया था आज के ही दिन। इसके अलावा विश्व खेल पत्रकार दिवस है आज। खेल पत्रकारों के काम को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 2 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। और विश्व यूएफओ दिवस भी है आज। एलियंस और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के प्रति लोगों में जागरूकता और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है आज। और 1997 में प्रसिद्ध हॉलीवुड विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म मैन इन ब्लैक अमेरिका में रिलीज हुई थी आज के ही दिन।

तो ये थी इतिहास में 2 जुलाई की खासियत। और श्रोताओं, अब इसी के साथ ही कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय हो चला है। शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकत

0: करार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
3: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा जो यहां के विकास को और गति देगा।
4: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
5: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है।

0: जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
3: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
1: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संजीव अभ्यंकर का गायन। राग है भैरव। आपके साथ तबले पर संगत की है केदार पंडित ने और हारमोनियम पर हैं प्रमोद मराठे।

0: अभी आप सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर का गायन, राग था भैरव। आपके साथ तबले पर संगत की केदार पंडित ने और हारमोनियम पर थे प्रमोद मराठे। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10%

की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हरा

0: कर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चार धाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: Morning News. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामानिगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमी कंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इतलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसअत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसर्रत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईपीएफ स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। ईपीएफओ ने अपने इलाकाई

0: और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के APF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जराए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी यूजर नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। जराए ने बताया कि इस बारे में तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। जराए ने मजीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत खत्म होने से पहले यूजर नेम फीचर की शुरुआत न करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदाम को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नजर सानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप, CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के 2 रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। CCTV कैमरे और RFID ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज

0: सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को दो मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधड़ी पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैनुल अक्वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाई तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैन अल-अक़वामी बाजार में गैस की कीमतों में तख़फीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकरात करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज

0: मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658
6: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: श्रोतों, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश कर रही है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति से जुड़ी हुई। जी हाँ, कहते हैं ना कि आसपास अगर हरियाली हो तो मन खुद ही हरा भरा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। उस समय आपका मन अगर उदास भी है तो प्रकृति की गोद में जाकर मन अपने आप शांत हो जाता है और खुद को थोड़ा सा अच्छा और फ्रेश फील होता है। और अगर हम प्रकृति के से इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति से हमें इतना फ़ायदा होता है, तो हमारा भी दायित्व है कि इस खूबसूरत सी हरियाली को हम बनाए रखें। और इसीलिए अपने आसपास जितने भी हो सके पेड़ पौधे लगाएं और ये पेड़ पौधे हम सबको ताजगी देते रहेंगे और हमारी ऊर्जा बढ़ाते रहेंगे। तो बस हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि हमें ढेर सारे पौधे अपने आसपास लगाने ही हैं।

सच में दोस्तों, प्रकृति की गोद में जब आप पहुंच जाते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि दिल झूमने लगे, दिल गुनगुनाने लगे। और आपको बता दें, या बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा कि 1 जुलाई यानी बीते कल से लेकर 7 जुलाई तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव। और इस दौरान बहुत सारे वृक्षों को लगाने की जिम्मेदारी हम पर है। कहते हैं ना, प्रकृति, पेड़ पौधे और हरियाली के बिना हम सबका अस्तित्व अधूरा है। और ये हमें याद दिलाता है कि पेड़ सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।

पेड़ों से निकली हुई जो डालियां हैं वो हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करती हैं। एक पेड़ केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, गर्मी को कम करता है, मिट्टी को बचाता है और साथ ही असंख्य जीवों को घर भी देता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम रास्ते में चलते हैं, कहीं दूर तलक जाना होता है, थक जाते हैं, तो ये पेड़ ही हैं जिनकी छाँव में हम थोड़ी देर विश्राम करके वापस से अपनी ऊर्जा का संचय करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना हो सके अपने आसपास पेड़ों की संख्या बढ़ाते रहिए। और इस वन महोत्सव में या हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने हमें पूरे प्रदेश में आम बहार आपके द्वार अभियान चलाने का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्देश्य ही है पौधरोपण को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना कि वास्तव में पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। और एक बात और, ये भी नहीं है कि सिर्फ आप पौधे लगाएं, पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना और एक पौधे को एक वृक्ष के रूप में तब्दील कर देने तक हमारी जिम्मेदारी बनी रहती है। और यही वो वजह है जिससे हरियाली फैलेगी, क्योंकि पेड़ लगा देना थोड़ा आसान भी है, हम पेड़ लगा देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसका फायदा हमें तब मिलता है जब वो एक वृक्ष के रूप में तब्दील हो। क्योंकि जितने ढेर सारे पौधे होंगे वो मिट्टी को बांधे रखेंगे, और इसीलिए हमारे जो शहर में बारिश होती है उसको भी आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि अब तो शुरू भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पौधे ही हैं जो हमारे जीवन में प्रकृति के महत्व को बनाए रखे हैं। जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है वो शायद हमारी लापरवाही का ही नतीजा है, इसलिए अब सचेत हो जाइए और ढेर सारे पौधे लगाइए।

सच में धरती की इस पुकार को हमें सुनना चाहिए, और यही वजह है कि इस वन महोत्सव में यूपी सरकार ने लगभग 35 करोड़ वृक्षों को लगाने का लक्ष्य रखा है, और साथ ही हर विकास खंड में फलदार वृक्षों के पौध वितरित किए जाएंगे, ताकि आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, जहां पर आप लगा सकें और वो वृक्ष बढ़ सके वहां ज़रूर लगाएं। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है हीलिंग द अर्थ थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स, यानी हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर हो जाएगी, और हम कितना भी चाहें अपने जलवायु को बनाकर रख सकते हैं अगर हम पौधे लगाते रहेंगे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पेड़ जो होता है वो केवल एक पेड़ नहीं रह जाता, वो हमारे एक जीवन का हिस्सा बन जाता है, और इन्हीं पेड़ों के समूह से बनता है जंगल। विकास की गति को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते कहीं ना कहीं अपने जो जलवायु है उससे खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तो अगर आप विकास करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान में रखना होगा कि हम अपने आसपास वृक्षों को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी हम पानी को देते हैं, जितनी हम अपने भोजन को देते हैं, या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम महत्व देते हैं, उसके साथ साथ हमें पौधों को भी उतना ही महत्व देना है। क्योंकि सच पूछिए तो एक पौधा लगाना सिर्फ एक पौधा लगाना नहीं होता, एक नई उम्मीद को जगाना होता है, वो उम्मीद जो आगे बढ़कर वृक्ष का रूप लेती है। एक बड़ा पेड़ हर साल बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। ये पेड़ ही हमारी सुरक्षा के, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बड़ी दीवार का काम करते हैं। आप क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, या कभी कल्पना में भी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर पेड़ ना होते तो हमारी धरती कैसी होती? ना छांव होती, ना पक्षियों की आवाज़ें होती, ना बारिश का संतुलन होता। तो वास्तव में पेड़ हमारी सुरक्षा की दीवार हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनकी भी रक्षा करें। पेड़ लगाकर भूल जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पानी देना, उसकी सुरक्षा करना और उसे एक बड़े वृक्ष के रूप में बढ़ाना ही हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने पर्यावरण को एक सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इस काम में जी जान से जुट जाएंगे।

0: दोस्तों, आज जब शहरों में पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है, तब ऐसे समय में ये वन महोत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। प्रकृति से हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ लिया है, और अब बारी हमारी है कि हम प्रकृति को क्या, कितना और किस रूप में लौटाते हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा करते हैं, और सच पूछे तो अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ कुछ पौधे भी लगाए ना और उसकी देखभाल करे, तो हमारी प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है। और हमारी बीच वनों की संख्या बढ़ती जाएगी। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी होते हैं। कहते हैं ना कि वृक्षों से, जंगलों से हमें औषधियाँ, फल, लकड़ी और सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ वातावरण मिलता है। और इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि आज लगाए गए पौधे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी तरफ से एक बहुत सुंदर उपहार हो सकता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम खूब सारे पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, और जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है उसको रोकने में एक कारगर कदम उठाएं।
1: मगर ये पवन जो तुम्हारे यहाँ से हो

दोस्तों, आपको याद होगा इस वर्ष हमने एक अभियान भी चलाया था, यानी इस अभियान में हम शामिल हुए थे, एक पेड़ माँ के नाम। और इसी तरह से अब जो ये आम बहार जो जन आंदोलन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसका हिस्सा हम बन सकते हैं। एक पौधा लेकर के अपने आसपास, घर के आसपास जहां आपको जगह मिलती है वहां जरूर लगाइए और इस अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि सच में अगर वो पौधा आपके पीढ़ियों तक बना रहेगा तो आपकी पीढ़ियां उस पौधे के माध्यम से तो आपको जरूर ही याद करेंगी, और उनके लिए हमारी तरफ से इससे अनूठा उपहार हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं ना, हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे और अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे, तभी तो हमारे बच्चे इस सुंदर से वातावरण में सांस ले सकेंगे, उनके लिए एक अच्छा पर्यावरण हम तैयार करके जा सकते हैं। और कहते हैं, हर एक पेड़ एक जीवन है, हर एक पत्ता एक उम्मीद है, और हर हरियाली हमारे आने वाली पीढ़ियों की मुस्कान है। तो जुड़े रहिए प्रकृति से और ढेर सारे पौधे लगाइए, और खुद ना लगाइए, साथ ही साथ और भी लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करिए। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, तो खुद से भी पेड़ खरीद कर आप लगा सकते हैं, और हर एक पेड़ को आप एक नाम दे सकते हैं ताकि वो एक परिवार का हिस्सा बन सके आपकी। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस अभियान से पूरे जोश और खरोश के साथ जुड़ेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि हर व्यक्ति आप में से एक पौधा जरूर लगाएगा। आज इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी रेडियो दोस्त संजू तिवारी को। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम मधुरिमा। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झंकार में हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे सुबह 10 बजे, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
1: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गिघासु गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गिघासु गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
2: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और जल्द ही उसको 10 से 15 जुलाई के बीच में हैवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा।
1: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दौतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समय सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दौतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91वीं रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दौतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद दौतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर डलमऊ स्थित VIP गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। माँ गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद KL शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जाँच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहन

0: गुणवत्ता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम फत्तेगंज कुरौता थाना लोहता वाराणसी निवासी रमाशंकर यादव ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी गीता देवी दिनांक 10 जून 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 50 वर्ष, कद 5.5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है, कदकाठी सामान्य है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरी बार इन्हें हरे रंग की साड़ी में देखा गया था। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम विजयपुरा कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी निवासी धर्मेंद्र चौहान ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी नीतू चौहान दिनांक 4 मई 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा और कदकाठी सामान्य है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जफरपुर पुल के पास थाना अली नगर जनपद चंदौली निवासी कमरुद्दीन ने सूचित किया है कि उनके पुत्र इमरान अली दिनांक 6 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 29 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, कदकाठी सामान्य है, ये मूक बधिर हैं। आखिरी बार इन्हें नीले रंग के लोअर और हरे शर्ट में देखा गया था।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी निवासी मगन कुमार के पुत्र रोहित कुमार दिनांक 26 जून 2025 की शाम लहुराबीर से लापता हैं। इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 6 फीट, रंग सांवला और कदकाठी सामान्य है। ये मूक बधिर हैं और आखिरी बार इन्हें पीले रंग की टी शर्ट और खाकी लोअर में देखा गया था।

वाराणसी से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार जैतपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी निवासी सोहन भारती ये दिनांक 27 जून 2025 से बीएचयू हॉस्पिटल से लापता हैं। इनकी उम्र है 65 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ और कद काठी सामान्य है। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया शीघ्र अतिशीघ्र निकटतम थाने पर सूचित करें। कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आइए सुनते हैं सेहतनामा। सेहतनामा में शरीके गुफ्तगु हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, आपसे बातचीत की है शम्स आरफीन ने, पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: सामिन, कुदरत ने इंसान को एक खूबसूरत सांचे में ढाला है, उसको तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है, और जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर दिमाग, दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत आंखें, चलने के लिए दो पैर और खून की गर्दिश और रफ्तार देने के लिए दिल, इन सब से मिलकर बनता है एक खूबसूरत जिस्म। लेकिन इस जिस्म की जब हम हिफाजत करना छोड़ देते हैं तो न जाने कितने अमराज इसी खूबसूरत जिस्म से वाबस्ता हो जाते हैं, इसलिए आज का प्रोग्राम जिस्म के नाम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ की खास पेशकश सेहत नामा। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। आज के खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगु हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस सेहतनामा में खैर मकदम है।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोलेस्ट्रॉल, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको आम जबान में क्या कहेंगे और इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या घरेलू नुस्खे से अगर हम इलाज करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
2: देखिए, आज की जो जिंदगी हम लोगों की है, जो भी चीज़ हम नॉर्मल जिंदगी में खाते पीते हैं
1: जी,
2: उसके अंदर मोस्टली जो चार चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया,
1: राइट,
2: दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरा आपका विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, चौथा आपका लिपिड यानी के
1: जी
2: फैट हो गया।
1: फैट हो गया,
2: ये भी एक तरीके चर्बी की एक किस्म है जो खाने से ही हमें मिलती है
1: जी।
2: इसमें ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो शरीर को बनाना पड़ता है उसके हिसाब से, जिसमें में अल्लाह पाक ने जो भी चीजें दी हैं सबका कोई ना कोई काम है। ऐसा नहीं किसी को कोई चीज बड़ी हुई है या किसी चीज घटी हुई है, बस जो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाता उसकी वजह से कुछ डिजीज वगैरह लाहक हो जाती है।
1: मतलब जो आप बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आम जबान में से हम चर्बी की शक्ल
2: कह सकते हैं,
1: राइट? डॉक्टर साहब, बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरीड, ये सब क्या चीज है और इनके क्या मुख्तलिफ काम है, इनके बारे में जरा रोशनी डालें तो हमारे सामने ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे।
2: देखिए, ये भी हमने बताया ना कि ये किस्म है
1: जी,
2: चर्बी की
1: जी।
2: जैसे आपने बताया कि LDL, ये भी एक तरह की चर्बी होती है, और बेसिकली जो भी चीजें जिसमें होती है उसका कोई ना कोई काम होता है। जो LDL होता है इसका जो मेन काम होता है कि ये हमारे हार्मोन्स को बनाने के लिए और हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए या बहुत से एंजाइम्स होते हैं उन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ये। और अगर ये सही मात्रा में शरीर में ब्लड में पाई जा रही है तो ये फंक्शन काम करते हैं, और अगर ये इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो फिर ये डिसरेगुलेशन में डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है।
1: अच्छा
2: जी, जी।
1: क्या ऐसा भी होता है कि किसी के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो तो उसको ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, ऐसा सही है?
2: देखिए, इसमें जो आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होता है।
1: ओके,
2: इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक डायबिटीज का मेन वजह है इसकी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लेते हैं हमारे सामने जो सुन रहे हैं इस वक्त, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, 200 से ऊपर निकल गया, 250, 270, 300, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले उन्हें के अपने घरेलू कौन से नुस्खे जो आसानी से मिल सके हम उसके इस्तेमाल करें? आमतौर पर लोग इस वक्त एस्ट्रोवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन तो ये कॉमन है और जिस डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने अपने घर पर इसका इलाज करें, लेकिन एक माहिर तिब्बे यूनानी से मशवरा लेके।
2: देखिए, मेन जो होता है, जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल की करते हैं
1: जी,
2: देखिए हमारी बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन्स जो होता है हमारा लीवर होता है, जो कि किचन होता है मेरा।
1: हाँ हाँ।
2: अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन हो रहा है तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। इसमें मेन है कि जब लीवर में हरारत बढ़ती है, हम लोग के यूनानी टिप के हिसाब से हम लोग को चार चीजों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो एक सफरा है, सौदा है, बलगम है और दम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: ठीक है। तो उसके हिसाब से ये देखना होता है कि किसकी मात्रा कम या किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। अगर बॉडी में बलगमियत बढ़ती, बलगमियत का मतलब ये होता है कि आदमी की जो फंक्शन है वो स्लो हो रहा है, जब प्रोसेस स्लो होता है यानी कि लीवर जो होता है थोड़ा सा कम फंक्शन में आता है, तो ये सब चीजों की मात्रा बढ़ने लगती है खून में, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है इन चीजों को मेटाबॉलाइज करके और उसके रीनल यानी कि गुर्दे के जरिए उसको शरीर के बाहर निकाल
1: देना। बिल्कुल।
2: अगर वो चीज कम काम कर रहा है इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो धीरे धीरे ब्लड में आके जमने लगती है। तो मेन वजह हमें कि जो मेरा लीवर है उसको सबसे पहले हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा लीवर सही होगा तो उम्मीद है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होगा धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। तो मेन लीवर को करने के लिए बहुत से दवाएं हम लोग के पास होती है। इसमें हम लोग जो होता है मेन तीन दवाएं जो होती है वो गर्म खुश्क दवाएं देते हैं।
1: अच्छा।
2: और ये सब जो होती है पेशेंट के मिजाज के ऊपर डिपेंड करती है। पेशेंट के मिजाज अगर गर्म है तो उसको हम ठंडी दवाएं देते हैं।
1: ओके।
2: ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल के मिजाज हम लोग देखते हैं कि वो उस किस लेवल का हो रहा है, तो उसी के हिसाब से उसकी दवाएं हम लोग तजवीज करते हैं।
1: अच्छा।
2: इसमें सबसे मेन चीज हमारे पास बहुत

0: अच्छी ड्रग है अफसन तीन। अफसन तीन जो होता है उसको हम लोग उसका जुशादा बना के उबाल के उसको पेशेंट को पिलवाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये ब्रांड नेम तो नहीं है अफसन तीन?
0: अफसन तीन एक मुफरत दवा है, अफसन तीन सिंगल ड्रग है, बहुत अच्छी है ये, और अर्क कास्नी होती है, कास्निक तरीके की मुफरत दवा हम लोगों की होती है, बहुत अच्छी ड्रग है।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन्हें अर्जुन छाल, लहसुन का इस्तेमाल करना, अदरक, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है बिलखसूस वो पलाकी है या एक अर्क मकोह है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके बारे में जरा रोशनी डालें।
0: देखिए, हमने बताया कि हम लोग का जो पेशेंट जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जो ट्रीटमेंट जो होता है हर पेशेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके मिजाज के हिसाब से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
1: जी जी।
0: अगर हमने आपसे पहले ही कहा कि लीवर में हम देखते हैं कि लीवर में लीवर की हरारत बढ़ी हुई है या लीवर में बरूदत बढ़ी हुई, यानी कि उसका डिसफंक्शन थोड़ा कम स्लो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से दवाओं की तजवीज हम लोग करते हैं।
1: अच्छा
0: जी जी।
1: डॉक्टर साहब, एक तो ये परसेप्शन बना हुआ है कि सेहत किसी की देख ली, पेट निकला हुआ देख लिया, ओबेसिटी उसकी है, अब हम पहले ही से गेस कर लेंगे कि ये बंदा, इसका तो कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ा होगा, लेकिन क्या पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा आपने देखा है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या इसके चांसेस रहते हैं?
0: बिल्कुल रहते हैं। मेन जो वजूहत हमने बताई है कि भाई जो लाइफ स्टाइल हमारा आज हो रहा है उसकी वजह से मेन एक वजूहत, लेकिन एक इसका जेनेटिक कॉज भी होता है जिसको मौरूसी बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट जो आप दुबले बता रहे हैं, दुबले पेशेंट में ये चीज होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि वो हो सकता है जेनेटिक हो उनका, वो उनके पेरेंट्स में या उनके पूर्वज में वो चीज रही हो, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर उसमें रहता है।
1: अगर जेनेटिक नहीं है तो?
0: अगर जेनेटिक नहीं है तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। एक हम लोग का ये एक नॉर्म्स होता है कि भाई अगर ओबेसिटी किसी को है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ज्यादा चांसेस रहते हैं, होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर ये पतले लोगों में चीजें हो रही हैं, जब तब तो समझ में आ रहा है कि उसके कोलेस्ट्रॉल हो गया है भाई, उसके ट्रीटमेंट जैसा कि अभी आपने तिब्बे यूनानी के हवाले से बताया, अगर हमारे साथ जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बहुत सेहतमंद लोग हैं, उनको दिन भर में कितने मिनट या कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे उनका जो फैट है वो कम हो सके, खत्म हो जाए, और उनका सुबह और शाम की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, शाम का खाना कितने बजे, इन सब पर भी रोशनी डालें।
0: देखिए, ओबेसिटी का अगर देखें कि ये एक सिंगल बीमारी नहीं है
1: जी,
0: इसको हम लोग पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप बोलते हैं। ओबेसिटी में बेसिकली एक जो आप देखेंगे तो अगर ऊपर से आप शुरू करेंगे, दिमाग एक उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा दिमाग जो होता है एक इसका मेन हार्मोन होता है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी एक फैक्टर होता है उसका। और सेकंड पे आपका आता है कि आपका जो रहन सहन है कि ये बिल्कुल डल आपकी लाइफ हो रही है, आप आराम से अपना उठते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, जो आपका ये चीजें हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और आपका तीसरा आपका खान पान हो गया कि आप किस तरीके की चीजों को खान पान आप ले रहे हैं, किस तरीके नाश्ता कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, मतलब उस डाइट की भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट किस टाइम खाना खा रहा है, कितना खा रहा है और क्या चीज खा रहा है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हम डे वन शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए मैं आपके सामने पेशेंट हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे सुबह का नाश्ते में सबसे पहले क्या लेना है और कितने बजे नाश्ता करना है।
0: देखिए, सुबह का बेहतर है कि नाश्ता अराउंड 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए, और मॉर्निंग की शुरुआत जो होना चाहिए आपको प्रोटीन डाइट से करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइट हमारे लिए, प्रोटीन ऐसी चीज होती है जो कि मेरी सारी रिपेयरिंग के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको रिपेयरिंग का काम करती है, बॉडी बिल्डअप करती है। तो हमें सबसे पहले प्रोटीन डाइट से शुरू करना चाहिए। प्रोटीन में स्पेशली आपका हो गया स्प्राउट्स हो गए आपकी, और आपके चने हो गए, चने में स्पेशली काबली चना हो गया आपका, और मूंग दाल हो गई आपकी, ये अंकुरित चीजें जो होती है सुबह की मॉर्निंग डाइट में आपको लेना बेहतर है।
1: ओके, क्या हम सुबह के नाश्ते में अंडा ले सकते हैं?
0: अंडा ले सकते हैं, बिल्कुल, प्रोटीन डाइट उसमें बढ़िया।
1: सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने के बीच में तकरीबन कितने घंटे का फर्क होता है?
0: कोई भी खाना हजम करने कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं, पूरा उसको मेटाबोलाइज होकर एक नॉर्मल उसमें खाना। आप जनरली आप मॉर्निंग में यह है कि आप 12 बजे तक की 11 बजे तक खाना ले सकते हैं।
1: ओके, एक परसेप्शन और यहाँ मेरे सामने आ रहा है, अक्सर ये कहा जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या जो मोटे होते हैं, कहा जाता है कि भाई आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते, ये परसेप्शन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां तक सही है?
0: देखिए, खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए, एक चीज रखिए पहले, या खाना खाइए या पानी पीजिए।
1: अच्छा,
0: तो खाने एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा 40 मिनट से 1 घंटे तक की, उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए।
1: चलिए, सुबह के नाश्ते में डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया, अब हम आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने के में किस तरह की डाइट होनी चाहिए?
0: देखिए, दोपहर में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं।
1: ओके,
0: आप दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो एक नॉर्मल डाइट है वो आपको ले लेनी चाहिए।
1: ठीक है,
0: दोपहर का खाना तो आप स्ट्रॉन्ग थोड़ा ले सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा छूट है।
1: अब रात के खाने पर बात करते हैं कि रात का खाना कितने बजे होना चाहिए और क्या होना चाहिए।
0: देखिए, हम लोग में यूनानी और आयुर्वेद दोनों चीजों में ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए।
1: ये इम्पोर्टेंट चीज है, और मेरे ख्याल से आजकल 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से, कि वो रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं खाना खाते हुए। डॉक्टर साहब, अब इन चीजों का जो असर होता है, एक और चीज सामने आ रही है, बिलखसूस नौजवानों में, हमारे हम सब में देखा जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है? कई 20 से 30 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो नौजवान तबका है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर की वजह पे आ रहे हैं तो आज भी मॉडर्न साइंस या जो भी वो कह रहे हैं कि 80% जो होती है वो जो इसेंशियल

0: हाइपरटेंशन होता है वो नॉन इडियोपैथिक कॉज होता है उसका। हाँ 20% में कुछ वजूहत होती है आपका उसमें, कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल उसकी एक वजह हो सकती है, इसके अलावा ओबेसिटी एक वजह हो सकती है, कुछ रीनल कॉजेज भी होते हैं उसके अंदर, तो इजेंशियल। लेकिन हम लोग जो यूनानी मेडिसिन है उसका एक ये कि हमारा लाइफ स्टाइल है एक उसकी बड़ी वजह हो गई है। हमने बताया स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है कि स्ट्रेस की वजह से आजकल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: जो हमारी सोच है हमारी वो है कि हर वक्त हम उसी में मुबतला रहते हैं कि भाई रात में सो रहे हैं तो भी हम इजी नहीं है, जो डीप स्लीप हमारी नहीं हो रही, जो हमारा रात में रिपेयरिंग का काम होता है, बॉडी सोने के टाइम सब रिपेयरिंग का काम करती है, वो बॉडी पूरी तरीके से नहीं आती, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वजह ये भी है कि हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है।
1: अच्छा, ये जो सूजन हो रही है उसकी वजह से हाइपरटेंशन?
0: बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है।
1: ओके, ये एक नई चीज हमारे सामने के लिए सामने आई है कि जो इंटरनल सूजन है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है।
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बात आ रही है, तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है?
0: देखिए, मेरे पास जो मेन मेरा हार्ट है वो एक बड़ा ऑर्गन, मतलब एक जो प्राइम ऑर्गन कहलाता है उसको,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, उसमें चैम्बर्स होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, सभी को पता है वो,
1: बिल्कुल।
0: और उसमें एक काम होता है कि बॉडी को पूरा ब्लड जो होता है शरीर तक पहुंचाना,
1: बिल्कुल,
0: और एक उसमें एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है कि जब वो रिलैक्स करता है, जब वो हार्ट जो होता है हमारा सिकुड़ता है यानी कंट्रक्शन करता है, तो पूरा हार्ट ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जाता है।
1: हाँ।
0: तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कंट्रक्शन के टाइम पे, हाँ। आर्टरीज में जो बढ़ता है, हाँ। वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद में जब वो रिलैक्स होता है यानी कि अपने रिलैक्सिंग पॉइंट पे, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग।
1: मतलब जो दबाव के वक्त जिस्म के अंदर फ्लो बढ़ रहा है उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो जो सिस्टोलिक हो गया और वापस जो आराम की पोजीशन में आ रहा है वो हमारा डायस्टोलिक हो गया। अगर लीजिए किसी का सिस्टोलिक नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये सूरत हाल किस चीज के इंडिकेट करती है?
0: देखिए, डायस्टोलिक हमने बताया ना, जब रिलैक्सिंग होता है हार्ट, कोई भी चीज अगर रुकेगी ज्यादा देर तक की शरीर में, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जा रही है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस पे, इसको देखना जरूरी होता है कि ये एक मेजर वजह होती है कॉम्प्लिकेशन की।
1: ओके,
0: तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए।
1: अभी हमने एक साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका 122 और 95 ये आया, यानी कि डायस्टोलिक उसका 95 था, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है।
0: जी, वो अलार्मिंग साइन है हमारे लिए,
1: अलार्मिंग साइन है। तो उसको हम किस तरह से, उसको कैसे मतलब एग्जामिन करें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टेस्ट करें उसके लिए हम?
0: देखिए, जनरलाइज जो ब्लड प्रेशर है इसके लिए हम लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल,
1: होगी
0: और आपके FT करा लेते हैं उसमें, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं कि उसमें देख लेते हैं प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही है, कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं है।
1: जी,
0: मेन वजूहत यही होता है, इसको देखते हैं पहले हम लोग।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी का ये डायस्टोलिक बढ़ रहा है जैसे 95 और 99 और 100 के आसपास हो गया है, तो क्या उसको मेडिसिन लेनी चाहिए?
0: जी देखिए, उसको वेट एंड वॉच करने के लिए उसको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करानी चाहिए।
1: जी,
0: और साथ में उसको एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए और उसकी स्लीप वगैरह को प्रॉपर करना चाहिए, और अगर थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो हल्का हम लोग मुदिरात वगैरह, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें हम लोग मुदिरात देते हैं, तो उससे उम्मीद है इंशाल्लाह वो चीज कंट्रोल हो जाती है।
1: ऐसे कोई मसाले मौजूद हैं जिनसे इस तरह का ब्लड प्रेशर घर में हम काढ़ा बना लें या कुछ बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है?
0: देखिए, जो आप बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी जो हम लोग को रेमेडीज है वो आपका चुकंदर, जो नाम सुना
1: होगा। अच्छा, चुकंदर, जी जी जी बिल्कुल,
0: उसमें NO2NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है।
1: ओके,
0: तो बेहतर है उसको या तो एज ए सलाद या उसकी सब्जी बना के या इवन उसका जूस बना के आप उसको लेंगे तो उम्मीद है उससे फर्क पड़ जाता है
1: चुकंदर को।
0: और उसमें मेन डाइटरी में उसका आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम होगा, इन चीजों को प्रमोट करते हैं, इन मिनरल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे कि इनकी जो आर्टरीज होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं हम लोग हैं।
1: अच्छा,
0: कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो प्रेशर कम पड़ेगा उसको।
1: जी जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है?
0: देखिए, स्ट्रेस हम एक हार्मोन आपका बेर में वही नाम ले रहे हैं, कॉर्टिसोल। बहुत बड़ी चीज है, आदमी इसको अब उस पर मॉडर्न साइंस भी काम कर रही है, उसको लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें मैनेज करना चाहिए।
1: जी जी,
0: देखिए, एक सबसे अच्छी चीज है जो ब्रिस्क वॉक आपकी है, सुबह उठ के कम से कम 30-45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए। उससे आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपको वो लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है स्ट्रेस के लिए।
1: जी, क्या आजकल जो लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे रात के 2 बज जाते 3 बज जाते हैं और फिर उनको जो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रेस और इसका जिस्म पर क्या असर पड़ता है? हमारे नौजवान तबके जो है उस तबके को आप खास तौर से ये पैगाम दीजिए कि क्या कर सकते हैं उसको।
0: देखिए, हमने एक चीज आपको पहले बताई कि भाई जो रात का टाइम ऊपर बनाया वो सोने के लिए बनाया,
1: बिल्कुल,
0: उसमें कुछ हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन, ये बैलेंसिंग हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, और ये हमने कहा बॉडी रिपेयरिंग का काम जो होती है वो रात ही में करती है।
1: ओके,
0: तो रिपेयरिंग का जो काम रात में होता है अगर हम उस टाइम पे अपना एक्टिविटी करते रहेंगे जाहिर है वो रिपेयरिंग बॉडी की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फिर वही कॉज होगा। इन्फ्लेमेशन आएगा तो इन्फ्लेमेशन के बीपी है, शुगर है, आपको ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी।
1: बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान लंग्स पर हम बात करना जरूरी समझते हैं कि लंग्स की एक्सरसाइज के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाए और वो पूरे बॉडी

0: को सर्कुलेट हो जाए। आप उसके बारे में जरूर हमारे सामने को बताएं कि फेफड़े के ऑक्सीजन को कंप्लीट ऑक्सीजन लेने के लिए क्या किया जा सकता है।
1: देखिए, सुबह का जो मॉर्निंग वॉक बता रहे हैं आपको, सुबह में जो ताजगी होती है, जो चीजों में होती है, उसमें आप केवल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ लंग्स की एक्सरसाइज होती है और कुछ ऐसे सिंपल, अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसका आपका जो लंग फंक्शन होगा बेहतर होगा उससे।
0: अच्छा, कहते हैं कि आप सांस खींच के एक बार छोड़ दीजिए और आप उसके बाद वेट करते रहिए सेकंड की तरह, की कितने सेकंड आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ही भागदौड़ भरी होगी, आप खुद जब थक जाते हैं अपने खुद के शेड्यूल से, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी से, तो रिलैक्स करने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: देखिए, हर आदमी का एक अपना शौक होता है।
0: बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली।
1: जी, एक शौक होना चाहिए और बेहतर है कि उसमें आउटडोर गेम आप जरूर शामिल करें।
0: जी,
1: आप आधे घंटे के लिए ऐसी चीज रखें कि आप जाके उस टाइम अपने सारे काम को भूल गए, अपना एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए आप।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उसमें आप रिलैक्सिंग एक फील करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, एक वो अलग एक माहौल एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करें उसको, और अपने दोस्तों के साथ, और एक टाइम एक जरूर फिक्स करें। वो एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत सारी चीजों को दूर करेगी।
0: मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, हंसी मजाक होता है इस दौरान, और बाहर घूमते हैं फिरते हैं, उससे बॉडी पे काफी बेहतर असर पड़ता है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारे दोस्त लोग जैसे डॉक्टर सईद अख्तर साहब बैठे हैं, या हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं और जाके एक दो घंटा पसीना हमने बहा लिया और उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो यकीनन एक अलग ही उसका मजा होता है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे कुछ सामान को पैगाम देना चाहेंगे?
1: देखिए, आज की लाइफ हम लोग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हमने खुद बना रखी है उसको।
0: बिल्कुल,
1: तो थोड़ा सा उसको इजी कर लीजिए। इजी का मतलब इन सेंस ये हो गया कि भाई सुबह उठिए तो कम से कुछ टाइम अपने लिए आप जरूर रखिए। भाई, सेहत ऊपर वाले ने सबसे बड़ी नेमत दी है, ये तो मान के चलिए आप। जब तक आपके पास सेहत, तभी आप सबके लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने देश के लिए, आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: ठीक है, तो उसके लिए एक टाइम बना लीजिए, एक्सरसाइज जरूर आप कम से कम 30-45 मिनट्स की एक मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक जरूर रखिए।
0: ओके,
1: और इसके लिए डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइट को बहुत सिलेक्टेड, बहुत क्वांटिटी क्वालिटी ये सब मेंटेन रखिए डाइट की, क्योंकि जो चीज हमारे जिस्म में जाएगी जाहिर है उसके असरात मेरे ऊपर होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर उसको हम सही से रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चीज़
0: सही। कहते हैं कि डाइट में नॉनवेज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या सही है? हफ्ते में एक बार लेना चाहिए आपको, ये सारी चीजें डॉक्टर साहब सही है?
1: देखिए, अति किसी चीज की भी नुकसान देती
0: है। ये तो है,
1: और हर बॉडी का, देखिए हमने बताया था कि हम लोग यूनानी मेडिसिन के हिसाब से, या अपना कॉन्सेप्ट जो होता है कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल मिजाज होता है और उसकी इंडिविजुअल डाइट होती है।
0: बिल्कुल,
1: सब आदमी के लिए जरूरी नहीं कि वही चीज हमको हो सकता है फायदा करे, हो सकता है नहीं सूट करे,
0: ये बात तो है।
1: तो ये इन चीजों का हम लोग तो उस तरीके से टेलर डाइट भी देते हैं उसी तरीके सब लोगों की अलग अलग।
0: डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसके लिए, इसके इलाज के लिए कोई घरेलू नुस्खा जो हो वो आप हमारे सामने को बताएं जो घर पर इस्तेमाल करें।
1: जी, देखिए, आपका सौंफ हो गई, आप बादियान जिसको कहते हैं हम लोग, सौंफ हो गई और आपकी इलायची हो गई,
0: जी
1: ये बहुत अच्छी मुदरी बॉल दवा होती है। इनको सिंपल सिर्फ बॉयल करके आप सुबह डेली नहर मुल लीजिए तो उससे ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल।
0: ये बॉयल करके और इसका जो पानी होता है उसको साइड कर देंगे या कैसे?
1: इसको आपने
0: बॉयल किया,
1: बॉयल कर लिया, एक चम्मच सौंफ हो गई आपकी, चार पांच पीस आपकी
0: इलायची हो गई,
1: इलायची होगी, उसको बॉयल कर लीजिए, उसको छान के पी लीजिए।
0: पानी पीना है उसका,
1: पानी पीना है उसका।
0: हाँ, यानी कि वो काढ़ा एक तरह, एक शक्ल में हो गया।
1: जी जी जी,
0: हाँ, ये एक अच्छी चीज है जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमारे सामईन हैं जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया इसको आप इस पर अमल कर सकते हैं, और ये जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी डॉक्टर से लगातार ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर कराते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, आपकी जो शिरकत रही वो हमारे सामईन के लिए बहुत मुफीद है, और इस खूबसूरत और खैरामद गुफ्तगु के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन, ये था हमारा आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम सेहतनामा, इसमें शिरकत करने वाले मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप करने चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को। आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सेहतनामा के अंदर शरीके गुफ्तगू थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, इनसे बातचीत की थी शम्सुल आरफीन ने, पेशकश आसिफ इकबाल की थी।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं विश्वनाथ और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले सुनिए पचरा।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 5 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भाशय में सिस्ट की समस्या। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर सुनीता सुमन। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 2 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: मीडिया वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार, और आज का ये कार्यक्रम आधारित है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर, और उम्मीद है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। फिलहाल आपके साथ आज इस प्रोग्राम में रूबरू रहेगी आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे खेल होते हैं जिनमें एक से एक खिलाड़ी इस समय विश्व पटल पर अपना नाम बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, उसकी आंखों में जीत का सपना होता है। दर्शकों की निगाहें उस जीत में, उस मुकाबले में टिकी होती हैं। लेकिन साथ ही एक वर्ग और होता है, और ऐसा वर्ग होता है जो ना तो पदक जीतता है ना ट्रॉफी उठाता है, फिर भी खेल जगत की हर धड़कन को दुनिया तक पहुंचाता है। और ये वर्ग है हमारे खेल पत्रकारों का। खेल पत्रकार केवल स्कोर नहीं बताते, वो संघर्ष की कहानी लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आगे बढ़ाने में खेल पत्रकारों का बहुत महत्व होता है। वे आंकड़ों के पीछे छिपी मेहनत, हार के पीछे का साहस और जीत के पीछे के वर्षों के समर्पण को अपने शब्द देते हैं। उनकी लेखनी उनकी आवाज को सिर्फ समाचार नहीं रहने देती, खेल को प्रेरणा का स्रोत बना देती है। और आज उन्हीं खेल पत्रकारों के बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे खेल जगत में खेल को सबसे आगे रखकर अपने आप को उसे पीछे रखते हैं, और हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ, दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ जुड़े रहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे विश्वनाथ और साथी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाश।

दोस्तों, आज है 2 जुलाई और आज के दिन हर वर्ष यानी 2 जुलाई को विश्व भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। और ये दिन खेल जगत की खबरों, एथलीटों के संघर्षों और प्रेरणादायक कहानियों को निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ हम सब तक पहुंचाने वाले खेल पत्रकारों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ द्वारा की गई थी। और 2 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी तारीख को 1924 के पेरिस ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की गई थी। तो 2 जुलाई क्यों मनाया जाता है ये तो हम जान गए, लेकिन आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इन पत्रकारों ने जो अपने कार्य से हम तक खेल जगत की सारी खबरों को पहुंचाया है, उनके समर्पण को हम याद करें। और वो खिलाड़ियों के पीछे हो जाते हैं, खेलों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों की जितनी भी लोकप्रियता है, उनके खेल के बारे में हम जितना भी जानते हैं, ये सब पर्दे के पीछे रहकर ये खेल पत्रकार करते हैं। हर बार इनकी मेहनत खिलाड़ियों को अव्वल दर्जे तक ले जाती है। सच पूछे तो जीत केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे वर्षों का जो अभ्यास होता है, अनुशासन होता है, समर्पण होता है, उससे मिलती है। और जब कोई खिलाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तब उसकी सफलता की कहानी करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यही खेल पत्रकार करते हैं। खेल पत्रकारिता केवल मैच का परिणाम बताना नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके जीवन की प्रेरक कहानियां और खेल संस्कृति को समाज तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, महत्वपूर्ण कड़ी है ये खेल पत्रकार। और आज डिजिटल युग में मोबाइल फोन पर कुछ ही सेकंड में हमें दुनिया के किसी भी खेल की जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये संभव तब होता है जब उन पत्रकारों की मेहनत लगी होती है जो कभी स्टेडियम में बैठकर, कभी मैदान के किनारे और कभी दुनिया के किसी भी कोने से लगातार जानकारी जुटाते रहते हैं और हम तक पहुंचाते रहते हैं। रेडियो के श्रोताओं के लिए तो खेल पत्रकारिता का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक समय था जब लोग क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो से कान लगाए बैठे रहते थे। कमेंटेटर की आवाज ही मैदान का पूरा दृश्य श्रोताओं के सामने खड़ा कर देती थी। और यही है उन शब्दों की ताकत और यही है खेल पत्रकारिता का जादू कि हर एक गेंद पर हम उतने ही रोमांचित हो जाते थे जैसे हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो मैच, वो खेल चल रहा हो।

खेलों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण कड़ी यानी खेल पत्रकारों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि खेल पत्रकारिता के लिए अलग से एक दिन या दिवस मनाने को क्यों चुना गया? दरअसल खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये अनुशासन, समर्पण, राष्ट्रीय गौरव और मानवीय संघर्ष की कहानी है। इन कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हमारे खेल पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके इसी योगदान को सम्मान देने और खेल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से आज का दिन मनाया जाता है। भारत में खेल पत्रकारिता की शुरुआत समाचार पत्रों के माध्यम से हुई। शुरुआती

दौर में अखबारों में खेलों के लिए बहुत कम स्थान होता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की रुचि बढ़ी, खेल समाचारों ने समाचार पत्रों में प्रमुख स्थान प्राप्त करना शुरू किया। और फिर आया रेडियो का स्वर्णिम युग, जिससे हम और आप जुड़े। क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर एथलेटिक्स, रेडियो कमेंट्री ने लाखों लोगों को खेल के मैदान से जोड़ दिया। जिन लोगों के पास टीवी नहीं था, वे कमेंटेटर की आवाज के सहारे पूरे मैच का रोमांच महसूस करते थे। गेंद कहाँ गिरी, किस दिशा में चौका गया, दर्शकों का उत्साह कितना है, ये सब कुछ शब्दों के माध्यम से हम तक, यानी श्रोताओं तक पहुंचता था। एक अच्छा खेल पत्रकार केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि श्रोताओं और दर्शकों को उस पल का सहभागी भी बना देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कला है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में खेल पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। अब समाचार केवल अगले दिन के अखबार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। फिर भी पत्रकारिता का मूल सिद्धांत वही है, यानी सत्य, निष्पक्षता और विश्वसनीयता।

दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर, और खेल पत्रकारों के बारे में हमारे मन में जितनी भी जिज्ञासाएं रहती हैं उनको कुछ हद तक शांत करने की कोशिश होती है। हालांकि सफल हो या ना हो, ये निर्भर करता है हमारे श्रोताओं पर। और जब हम खेलों की बात करते हैं, किसी भी खेल की बात करते हैं, मैच खत्म होने के बाद सब हमको अच्छा लगता है, हम मैच जीते या दुखी होते हैं, हारते हैं, लेकिन इस दौरान भी ये खुश होने और दुखी होने से ऊपर हमारे जो खेल पत्रकार हैं उनका काम चलता रहता है। मैच खत्म हो जाता है लेकिन खेल पत्रकारों का काम फिर से शुरू हो जाता है। वो अगले दिन की न्यूज़ हेडलाइन और न्यूज़ डिटेल बनाने लगते हैं। वे खिलाड़ियों से बात करते हैं मैच खत्म होने के बाद, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, रिकॉर्ड खंगालते हैं, नियमों को समझते हैं और फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ समाचार प्रस्तुत करते हैं। कई बार उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। तेज धूप, बारिश, लंबी यात्राएं, अलग अलग समय, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम करना, हर पल बदलती परिस्थितियों के बीच भी सटीक जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी होती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि खेल पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं बल्कि समर्पण और धैर्य का कार्य माना जाना चाहिए, और यही वजह है कि उनके इस परिश्रम को सम्मानित करने के लिए, सलाम करने के लिए आज के दिन को मनाने की शुरुआत की गई।

0: दोस्तों, इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर। इस पर आगे भी हम बातें करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये छोटा सा संदेश। कहीं जाइएगा मत, रेडियो सेट छोड़कर हम यहीं हैं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 5 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भाशय में सिस्ट की समस्या। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर सुनीता सुमन। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 2 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: इस छोटे से अंतराल के बाद हम फिर लौट आए हैं हमारे और आपके बीच में जो बातचीत चल रही थी यानी विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर, और साथ ही खूबसूरत से गीत आप तक पहुंचाए जा रहे थे, उस कड़ी को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं। जब भी किसी बड़े मैच की चर्चा होती है तो हमारे मन में खिलाड़ियों के नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें भी होती हैं जिन्हें सुनते ही पूरा मैच हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाता है। ये आवाज़ें होती हैं खेल पत्रकारों की, कमेंटेटरों की। भारत में यदि खेल कमेंट्री की बात हो और जसदेव सिंह का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। उनकी सधी हुई गरिमामयी और प्रभावशाली आवाज़ ने हॉकी, एथलेटिक्स

अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को लाखों भारतीयों तक पहुंचाया। जब वे कमेंट्री करते थे तो लगता था जैसे श्रोता स्वयं स्टेडियम में बैठे हों। क्रिकेट पत्रकारिता और कमेंट्री की दुनिया में भी हर्षा भोगले का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनकी भाषा सरल और विश्लेषण गहरा होता था और प्रस्तुति संतुलित होती है। यही कारण है कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कमेंटेटरों में गिना जाता है। बात करें वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेनन की, तो उन्होंने दशकों तक क्रिकेट और अन्य खेलों पर गंभीर और निष्पक्ष लेखन किया है। वहीं बोरिया मजुमदार ने खेल इतिहास और खेल पत्रकारिता को नई दृष्टि दी। ऐसे हमारे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं या कई लोग उन्हें नहीं जानते, लेकिन आज का दिन खास है और हम यही चाहते हैं कि आप आज उन पन्नों को एक बार पलट कर देखिए, उन जो पर्दे के पीछे हमारे सितारे हैं उनके बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए, क्योंकि हर एक का नाम लेना हमारे लिए भी प्रोग्राम में संभव नहीं है, तो ये काम हमारे श्रोता बखूबी कर सकते हैं। तो बस गाने सुनते रहिए और इस पर भी ज़रा गौर फरमाइए। खेल पत्रकारिता केवल समाचार लिखने का काम नहीं करती हैं, बल्कि खेल और समाज के बीच, यानी खेल और हमारे आपके बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं।

dangle, dangle, dangle, dangle. दोस्तों कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अपने आप को सफलता दिलाना या सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और कई क्षेत्रों में ये मेहनत दिखाई भी देती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां ये मेहनत दिखती नहीं है, सिर्फ उनका काम दिखता है। एक अच्छा खेल पत्रकार बनने के लिए केवल खेलों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, उसे भाषा पर पकड़, तथ्यों की समझ, निष्पक्ष सोच और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। मैच के दौरान हर एक गेंद, हर एक गोल, हर अंक और हर रिकॉर्ड पर उसकी पैनी नजर रहती है और ये केवल ये नहीं बताता कि कौन जीता या हारा, बल्कि ये भी समझाता है कि जीत की वजह क्या रही और हार से क्या सीख मिल सकती है। आज के डिजिटल दौर में खेल पत्रकार वीडियो रिपोर्ट, पॉडकास्ट, लाइव ब्लॉग, सोशल मीडिया अपडेट और डेटा एनालिसिस का माध्यम भी बनते हैं और ये सब करके दर्शकों तक हमारे सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। तकनीक भी बदल गई है लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आज भी वही है जो पहले था, लोगों के दिलों में जोश भरना, ऊर्जा जगाना, यही उनका काम है। एक समय था जब खेल की खबर अगले दिन अखबार में पढ़ने को मिल जाती थी, फिर रेडियो ने खेल को आवाज दी, टेलीविजन ने उसे चित्र दिए और आज डिजिटल मीडिया ने खेल को हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। अब मैच के दौरान हर एक सेकंड की खबरें हमारे पास होती हैं, हम तक पहुंचती हैं, लेकिन इस तेजी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है, वो है सही और प्रामाणिक जानकारी देना। एक सच्चा खेल पत्रकार कभी भी अधूरी अस्पष्ट जानकारी प्रसारित नहीं करता, वो पहले चीजों को समझता है, तथ्यों की पुष्टि करता है, फिर समाचार आगे लिखता है और यही पत्रकारिता की बहुत बड़ी पहचान है। खेल पत्रकारों को कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, लेकिन अपने ज्ञान, आत्मविश्वास और निष्पक्ष विश्लेषण से खेल पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दे रहे ये हमारे महान खेल पत्रकार आज भी हम सबको हर एक खेल से उसी तरह जोड़े रहते हैं जैसे हम पहले हॉकी के दीवाने हुआ करते थे, क्रिकेट के हुए, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे खेल जुड़ रहे हैं और उन खेलों के बारे में जागरूकता लाना, उन खेलों के बारे में जानकारियां पहुंचाना, ये हमारे खेल पत्रकार बखूबी कर रहे हैं।

पुरुषों का दबदबा था, यानी बहुत सारे जो पुरुष थे वही इस पत्रकारिता से जुड़ते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी हो रही है और बढ़ती जा रही है। मैदान से लाइव रिपोर्टिंग करनी हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट कवर करना हो और अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ महिलाएं इस खेल पत्रकारिता को आज नई ऊंचाइयां दे रही हैं। खेल पत्रकार केवल बड़े टूर्नामेंटों तक ही सीमित नहीं रहते, ये गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में छिपी प्रतिभाओं को भी खोज कर दुनिया के सामने लाते हैं। कई बार किसी युवा खिलाड़ी की पहली पहचान किसी खेल पत्रकार की रिपोर्ट बन जाती है। यही कारण है कि खेल पत्रकारिता केवल समाचार नहीं बल्कि प्रतिभा को पहचान दिलाने का माध्यम भी बनती है, और एक अच्छी रिपोर्ट किसी खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा सकती है, खेल के प्रति लोगों की रुचि जगा सकती है और नई पीढ़ी को मैदान तक खींच लाने की कोशिश करती है। और जब भी हम किसी खिलाड़ी की सफलता के पीछे के वर्षों के संघर्षों की बात करते हैं तो ये पत्रकार ही हैं जो उसे हम सब के सामने लाते हैं। सुबह की कड़ी मेहनत, अनगिनत अभ्यास सत्र, हार से मिली सीख और फिर एक दिन जीत का सुनहरा क्षण, इन सबको दुनिया तक पहुंचाने का काम खेल पत्रकार ही करते हैं। और एक अच्छा खेल पत्रकार केवल ये नहीं बताता कि किसने कितने रन बनाए, कितने गोल किए, वो ये भी बताता है कि इस उपलब्धि के पीछे कितनी मेहनत, कितना त्याग, कितनी लगन छिपी है, और यही संवेदनशील खेल पत्रकारिता को अन्य पत्रकारिता से अलग बनाती है। ये बहुत मेहनत का काम है। रेडियो की दुनिया से खेल कमेंट्री का अपना अलग जुड़ाव रहा है, आकर्षण रहा है। लोग ट्रांजिस्टर लेकर बैठ जाते थे और आज भी आप देखेंगे दूर कहीं लोग बैठे रहते हैं, अगर घर पे नहीं है, टीवी नहीं देख सकते, तो रेडियो के माध्यम से कहीं भी बैठकर हम खेलों के बारे में जानकारी लेते हैं, टूर्नामेंट की कमेंट्री सुनते हैं और वहाँ इन खेल पत्रकारों की मेहनत और जज्बा दिखाई देता है।

दोस्तों, खेलों के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं और कौन कौन से खेल होते हैं इनके बारे में भी जानते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती। वो जानकारी हम तक पहुंचाते हैं ये खेल पत्रकार। खेल पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष, अनुशासन और प्रेरणा का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जब कोई खिलाड़ी विश्व मंच पर तिरंगा लहराता है, तो उस गौरवपूर्ण क्षण को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में खेल पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे केवल जीत का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि हार के बाद भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाली कहानियां सामने लाते हैं। कई बार हम खेल में हार पाने के बाद खिलाड़ियों के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, लगता है कि नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं खेला। ऐसे में खेल पत्रकार ही हैं जो उनके बारे में, उनके पुराने खेल के बारे में या उनके बारे में और सारी कहानियां लेकर आते हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं, हम शायद गलत थे और ये नियति है। कभी कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है और कभी वही थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ऐसे में ये खेल पत्रकार ही हमें समझाते हैं कि नहीं, ये समय है और कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने, हम सबका मनोरंजन करने, हम सब तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने का काम ये खेल पत्रकार करते हैं। और ऐसे में आज के दिन यानी विश्व खेल पत्रकार का दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को नमन करते हैं, उनके अनुशासन को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को सलाम करते हैं।

दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस पर आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? झंकार हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। और अब बहुत सारी बातें हमने आपसे की आज, और कुछ प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाए, और अब कार्यक्रम का अंत यानी झंकार प्रोग्राम का अंत हम कर रहे हैं उस गीत के साथ। यानी आज हमारे जिन भी श्रोताओं का, जिन भी दोस्त मित्रों का आज जन्मदिन है, जो भी हमसे जुड़े हैं उनका, या जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं, रेडियो सुनते ज़रूर हैं, उनको, जिसका भी आज जन्मदिन है, उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब झंकार कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आपके ईमेल संदेशों पर आधारित है। आपने पहले से बहुत सारे फरमाइशी ईमेल संदेश हम तक पहुंचाए हैं और उन्हीं में से हम आपकी ही पसंद के गीत को चुनकर आप तक आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाएंगे। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा के साथ। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आपकी पसंद का आपको सुनवाते हैं और जिन श्रोताओं ने इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है उनके नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले गीत सुनिए।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम खानदान, संगीत खय्याम का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। इस गीत की फरमाइश आई है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा था पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। ग्राम डाकघर निमनाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कर्मजीत कौर।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से। इन दोनों ही गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की। ये पसंद है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। नागर कोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू। जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुवान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद मुलाणी, नसीर और बादशाह मुलाणी, ये फरमाइश आई फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे। तिलदार नगर पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। गीत को सुनना चाहा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया।

ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर से। ये फरमाइश है गांधी चौक बाड़मेड़ राजस्थान से बवलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श खलीफा। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और ये फरमाइश है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

श्रोताओ, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आपके ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत और आपकी अगली पसंद कामचोर फिल्म के गीत की किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। जिन श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश की है उनके नाम अब हम आपको बताए देते हैं। ये हमारे श्रोता हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पसंद आई हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा की। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, अंशिका, आदित्य और इनके परिवार के सभी सदस्य। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइश है ये। और अगला फरमाइशी ईमेल संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का अगला गीत हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। ग्राम पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री और इनके मित्रगण

पसंद आई राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, कल्पित चौहान की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, और इनकी फरमाइश है मारहरा दरवाज़ा एटा से। सिकंदरा से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम जैन। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार माहिरा और निशा अजीम। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू, उमरखेड़ से श्वेता सोनी, प्रमिला सोनी और सरिता सोनी। गीत को सुनना चाहा भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन, पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या रामटेके। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी का संदेश, और यहीं से स्वाति प्रयाग चौधरी। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थीं। फिल्म का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में वो 7 दिन फिल्म का गीत। पसंद करने वाले श्रोता, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक और माही मल्लिक। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक शर्मा। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल नाचानी और प्रगति। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा, वसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, अन्विका, तनुश्री गुप्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा नारी पचदेवरा गाजीपुर से। इसी गीत को सुनने की फरमाइश बोरखेड़ा पिनामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दिशा और कुश मूणत। काप सहेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा, जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, मेरठ कैंट से राधिका शाक्य और दिव्या अग्रवाल। मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद, मिथुन सांगा और राधिका। डोंडी लोहारा से अजय जटोलिया, तुषार जटोलिया, छत्तीसगढ़ से अशोक और प्रभा। आपका ये ईमेल संदेश। जेल रोड शिमला से प्रमिला, अशोक जाटव, प्रभा रानी। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, संदीप श्याम। बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, सविता और आशा परवीन।

दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है वो सात दिन। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है।

बजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आपके ईमेल संदेशों पर आधारित अगली फरमाइश जिन श्रोताओं ने की है, उस फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीत जयदेव का। और अब श्रोताओं के नाम भी बता देते हैं जिनकी फरमाइश ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंची। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति, निर्मला त्रिपाठी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। अगला फरमाइशी संदेश है, अस्तुपुरा मौसम अजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, गिरिडीह झारखंड से। ये फरमाइश आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।

गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। ये फरमाइश है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला और कुमकुम सुरलकर की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

और अब इस कार्यक्रम के हम आखिरी गीत की तरफ चल रहे हैं। मधुमती फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे और इस गीत की फरमाइश आई है कमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। गीत को सुनना चाहा व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। फरमाइश

तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन की। बरवट वकाल बुल्ढाना से नारायण कमल दिव्या और जय। ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता।

0: ये रहा आज का ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम, और कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है। और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाख

0: लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर

0: यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
6: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा। हा?

0: साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
1: महाराज की जय हो,
2: महाराज की जय हो,
3: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
4: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
6: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
5: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
6: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
4: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
4: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
9: गद्दी पे बैठ के।
10: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
11: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
4: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष

0: के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो।
2: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश

0: गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
1: श्रीहरिकोटा से आदित्य एलवंसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
0: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था, आदित्य एल1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
2: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
3: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
2: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
3: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
4: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
5: हम सब अच्छे हैं।
4: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
5: जी, हम तैयार हैं।
4: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य एल1 के बारे में।
5: आदित्य एल1 के बारे में?
6: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
3: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
2: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
4: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
4: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी, मेरा नाम श्रुति है।
4: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
7: सूर्य ग्रह है या तारा?
4: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
3: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
4: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
5: अच्छा सर।
2: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
4: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
2: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
4: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला?
2: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
4: शाबाश, समझ गए ना?
5: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य एल1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
4: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य एल1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
5: जी सर।
4: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है,

0: इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है?
1: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य ज्ञान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य ज्ञान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
2: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
1: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
10: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
10: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
11: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
10: डायल कीजिए
12: 0542227658।
11: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
9: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं दिव्यांशी द्विवेदी। इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं भजन, रचना मीराबाई की।

इस भजन के बाद अब सुनिए गीत। रचना महादेवी वर्मा की और कलाकार हैं दिव्यांशी द्विवेदी।

ये था आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी दिव्यांशी द्विवेदी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद साबरी खाका सारंगी वादन। राग है गौड़ सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे सारंगी पर प्रस्तुत राग गौड़ सारंग। कलाकार थे उस्ताद साबरी खां। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में हम आपको दे जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 से। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 4 का। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी दिव्यांशी द्विवेदी, समय रात्रि 8 का होगा। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें पशुओं में लंपी बीमारी कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत किसान भाई सुनेंगे। और इस बातचीत के साथ ही किसान भाइयों को सुनवाएंगे लोकगीत, कलाकार होंगे विश्वनाथ और साथी। इन्हीं के गाए लोकगीत आप लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। धरती के गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5 का।

आज आपको सुनवाएंगे अवधी गीत। बहनें अपना अग्नैया कार्यक्रम सुनेंगी दिन 1:15 पर, जिसमें मोबाइल सुविधा या सेहत का दुश्मन, इस विषय पर बहनों को शैलेश चौरसिया की वार्ता सुनवाई जाएगी। कहकशा कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 2:30 पर, फिल्म संगीत शाम 6:10 पर, शाम 7 और रात्रि 10। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वास सोनकर, जिनके पिता का नाम है

प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वास सोनकर, जिनके पिता का नाम है विनोद कुमार सोनकर, ये निवासी हैं ग्राम परमापुर टेढ़वा, थाना कोतवाली, जनपद मिर्जापुर के। विश्वास सोनकर 24 अप्रैल 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार, इनकी उम्र है 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंग गेहुआ और इनका चेहरा गोल है। अगर आपको विश्वास सोनकर के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष परमापुर टेढ़वा मिर्जापुर को सूचित करें और सूचना के लिए फ़ोन नंबर है 8881700570। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8881700570। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त सूचना के अनुसार मयंक पाल, जिनके पिता का नाम है शिव कुमार पाल, ये निवासी हैं ग्राम गोबरहा, थाना चिल, जनपद मिर्जापुर के। मयंक पाल 9 जून 2025 से लापता हैं। मयंक पाल की उम्र है 20 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, लंबाई 5 फीट 11 इंच। अगर आपको मयंक पाल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप इस नंबर पर सूचित करें 9004950110 9004950110। सूचना आप नज़दीक के पुलिस थाने में भी दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। इलाकाई खबरें अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।

0: कन्हैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोगों के नमस्ते और साथ में कहीं गौरी तहू के नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, तहके भी नमस्ते और कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोग के भी नमस्ते।
0: कहो गौरी।
1: दीदी,
0: काली से कुछ लगत बा कि भगवान जो हो दया कैले बाण रह के मौसम जो हो लगत बा कि भाई बारिश हो जात बा, लेकिन उतना उमसो बढ़ गई बा।
1: अरे दीदी एकदम सही कह, तो वो कल जब बदरी हवा देखमी तो ये मन में बड़ा खुशी भवे कि देखा लागत कि आज राती में झमाझम बारिश होई और मन के जौन है तौन हरियरी मिली, लेकिन इत उल्टे हो गए। रात भर इतना उमस इतना गर्मी कि समझा कि मनई के स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ जाये अगर यही तरह मौसम रही। तो
0: कहल जला ना कि भाई मौसम तो अपने भी जाज में रहला, जब जौन मौसम रहला अगर ओकरे हिसाब से ना हो, जैसे बरसात का समय बा अगर पानी ना बरसात बा तो मन ही त्राही त्राही कहले बा कि भाई कैसे हूँ जौन हो दो पानी बरसावा जैसे मन के जौन सुकून मिले। और साथे कही ना कि एकरे साथ साथ एक बात इहो जरूरी हो कि भाई हर आदमी के चाहिए कि अपने प्रति सचेत रहे, जैसे हम लोग कहे ना कि प्रकृति के प्रति सचेत रहे, बाल बच्चन के प्रति सचेत रहे, आसपास के प्रति सचेत रहे, तो ऐसे ही अपने प्रति भी जौन हम महिला लोगन के स्वयं के प्रति जो हो वो सचेत रहे जरूरत हुए।
1: एकदम सही बात कहत हो दीदी कि अभी जौन हमने का सचेत और स्वास्थ्य का बात करत हैं जा, तो जैसे मनई के अपन स्वास्थ्य सुरक्षा जरूरी है, वैसे ही अपन आत्मरक्षा भी बहुत जरूरी है। काहे कि अपन बहिन लोग हैं, देखा ही जब घर से बहरे जात हैं चाहे कहीं भी रहत हैं तो एगो ये देखे के भावना मिल जाला दीदी कि हर जगह आदमी दबावे के कोशिश करेला कि अरे महिला हैं दो बात बोल के निकल जा, तो अपन आत्म सुरक्षा खुद ही करे के है।
0: बात बिल्कुल अच्छी कहलू है, एकदम पते के कहलू है। कहे का मतलब है कि जब आप अपने के प्रति स्वयं सचेत रही हैं, अपने अधिकारन के प्रति अपने प्रति, तो देखा हो इतना समाज के नियम हो कि अगर आप अपने प्रति नर सचेत

0: रही है ना, तो भाई
1: हाँ
0: सामने वाला आपके जो कमजोरी का फायदा उठावे ना।
1: बिल्कुल।
0: और जो कहलुआ कि बहन लोगन अब देखा घरे से बहरे जाते हैं, काम काज करते हैं, दिन होता रात होता सांझ होता सवेर होता, तो भाई अब जैसे पुरुषन के साथ मिल के कदम से कदम मिला के बहन लोग काम करते हैं तब, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे ना कि बहन लोगन के अपने जो है महिला सुरक्षा का बहुत जरूरत होला।
1: जरूरी है।
0: तो हम कही ना कि भाई महिला सुरक्षा की जरूरत हुआ तो एक प्रति बहन लोग खाए ना स्वयं अपने प्रति जागरूक हो जाए
1: बिल्कुल।
0: कि भाई हमें क्यों के भाई सुरक्षा जरूरत ना हो, हम स्वयं में इतना मजबूत हो जाएं, आत्मरक्षा कह सके अपन, अपने जो ना अधिकार के प्रति सचेत रह सके। और इतने नहीं गौरी, हम कहीं ना
1: हाँ दीदी।
0: कि आप जहां अपने कार्यस्थल पर हैं वहां पर भी अपने प्रति स्वयं जागरूक रहें। ये ना है कि भाई क्यों हमारे मदद बदे आगे आई, अगर आपके साथ केहू भी तरह का कोनो ऐसा व्यवहार होता हो, दुर्व्यवहार होता हो, या आपके सम्मान के कोनो ठेस पहुंचत हो, या आपके कार्य में कोनो बाधा आवत हो, तो एकरे प्रति आप स्वयं जागरूक रहें। अब तो देखा बहुत सारी ऐसा व्यवस्था भी हो गई सरकार की तरफ से, ऐसा ऐप आ गल हुआ, ऐसा हेल्पलाइन आ गल हो, जेके की आप मदद ले करके अपने प्रति सचेत होकर के अपन स्वयं अच्छा कह सके नहीं बिना क्यों की सहायता की।
1: बिल्कुल एकदम सही बात कहते हैं दीदी। और बड़े नीके का जानकारी बतौनी हाँ, बहिन लोग सुन ले हुई हैं ते समझबो करी। और देखिए दीदी, अगर ये महिला आपन सुरक्षा खुद ना करिए, अगर खुद दबके रहिए, तो बाहरी कोई भी सुरक्षा करे ना आई, आवे दिन हमनी के सुले के मिलेला कि घरेलू हिंसा, कितना घरेलू हिंसा होता, बहिन लोग के प्रताड़ित कइल जाता, कहीं बाल बच्चा के अति प्रताड़ित कइल जाता, कहीं कोई दहेज प्रथा जवन है एक वजह से भी प्रताड़ित कइल जाता, लेकिन स्कूले पढ़े जाते हैं तो रास्ता में उन लोग के साथ गलत व्यवहार होता। तो ये सब चीज बदे खुद आगे बढ़े के चाहिए और इके रोके के चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कहलू है, यही सब लोग बार बार घुरा घुरा कहला कि महिला का पढ़ल लिखल, महिला का जागरूक होना बहुत जरूरी है। काहे से जब आप स्वयं में जागरूक हुई हैं तो आपके साथ साथ सब लोग आपके साथ दे हैं। अगर आप अपने मान ली कोनो परेशानी हो गए
1: हाँ दीदी।
0: ओकरे अपने अंदर दबा के आप बैठल हो, तो क्यों सामने वाला ना जानत हो कि कोनो परेशानी हो गए।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो परेशानी के आप स्वयं जागरूक न हुई है, क्यों से न कही है, क्यों को मदद न ली है, तब तक आपके कोनो भी मदद या सहायता क्यों से ना मिल सकेला। तो ये भी जरूरी हो कि आत्मरक्षा तबे हो जबकि महिला सुरक्षित रही, और महिला सुरक्षित रही तो अपने की जो है आत्मरक्षा स्वयं कह ली। अब बात कही ना एक साथ ही साथ एक बात और कही।
1: हाँ
0: कि
1: दीदी।
0: भाई स्वास्थ्य के बात करते रही है हम लोग कि भाई मनई स्वस्थ रही तबे सब काम काज कह सकला। और एक बदे देखा सरकार भी जो है ना अपन बहुत जो है सचेत भइल हो, वही लोगन के सहायता देत हो, जैसे कमजोर वर्ग का महिला लोग हैं या पिछड़े जो तबके के महिला
1: हाँ।
0: हैं या अपने जो अल्पसंख्यक बहन लोग हैं, इनके बदे भी सरकार बहुत जागरूक हुआ है और चाहत हो कि जो कमजोर रूप से आर्थिक रूप से जो है महिला लोग हैं इनके हर तरह का जो है स्वास्थ्य संबंधी पढ़ाई लिखाई का जो है सुविधा देवल जाए।
1: बिल्कुल सही बात है दीदी। और देखिए एकरी बदे तरह तरह का योजना भी चला था, जीवन ये समय योजना चला था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, फिर आयुष्मान भारत योजना है, जेकरे तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कइल जाता
0: है। इतना नहीं हो कहीं कि मातृत्व तो एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल का भी बात कइल जात हो, ये बदे खाली बहन लोग नहीं जो स्वास्थ्य बच्चा होते हुए
1: हाँ।
0: शिशु हुए उनके बदे भी जो है सरकारी प्रयास करत हो कि भाई हर तरह से जो है कि लोगन की मदद दे करके अपने समाज में अपने देश में स्वस्थ नागरिक रही है, स्वस्थ लोग रही है, आर्थिक रूप से जो है कि सशक्त रही है, तब देश का विकास हो। और कहीं कि भाई बहन लोगों से बतियाओ कि बहुत कुछ हुआ लेकिन कुछ जरूरी संदेश सुन लेवल जाए।
1: सुन लेवल जाए।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: हाँ गौरी,
1: हाँ दीदी,
0: अभी हम लोग कह लिए ना बहन लोगों से बहुत कुछ बतियाओ क्या हुआ।
1: हाँ दीदी एकदम सही बात कहते हो, हमने के बहन लोग से जब मिले आए नहीं जा तरह तरह का बात विचार ले।

0: लेके आवे नीजा, बहुत कुछ लेके आवे नीजा। तो आज यही पे एगो वार्ता लेके आयल हई जा कि मोबाइल सुविधा या सेहत का दुश्मन है, एकरे बारे में बतैले हमें शैलेश चौरसिया। तो बहन लोग के सुने
1: सुने।
2: नमस्कार। आकाशवाणी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम अंगनैया में आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं संपूर्ण आकाशवाणी टीम का हृदय से शुक्रगुजार हूं और उन श्रोताओं का भी जो अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जिस विषय को आज चुना गया है वो बहुत विस्तृत है। वैसे तो मोबाइल एक छोटा सा यंत्र है और बेहद उपयोगी। इस विषय पर बातचीत प्रारंभ करने से पहले मुझे कवि बिहारी जी की प्रसिद्ध दोहे से दो लाइनें याद आ रही हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जिसका अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे। मोबाइल फोन देखने में बहुत छोटा लेकिन बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके जख्म इतने गहरे हैं जिसे मोबाइल उपयोग करने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता। मोबाइल फोन को यूं कह लें, यह दोधारी तलवार है जो बड़ी सुविधा प्रदान करता है लेकिन अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव, एकाग्रता में कमी, आंखों पर अत्यधिक दबाव भी बनाता है, गर्दन में दर्द होना, नींद की कमी और तो और सामाजिक रिश्तों से दूरी बना रहा है। आप अकेलेपन की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसी वजह से सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि मोबाइल की जितनी आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल करें, वरना 21वीं सदी के इस वरदान से आपको तमाम तरह की विकृतियों का सामना करना पड़ सकता है। बात अगर सुविधाओं की करें तो संचार की दुनिया में आपको अपडेट रहने के लिए, तुरंत जानकारी हासिल करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक आपातकालीन सहायता मोबाइल ही देता है। अगर ज्ञान और शिक्षा की बात करें तो वर्तमान समय में छोटे बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों तक सबके लिए मोबाइल पर उपलब्ध ज्ञान शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाता है। अगर मनोरंजन की बात करें तो फिल्में, संगीत और जिस तरह की भी आप जानकारी चाहते हैं, आप अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, वह सभी आपका मोबाइल प्रदान करता है। जो भी आप मोबाइल से तमाम साइट्स के माध्यम से जानना चाहते हैं, जिनमें आपकी रुचि है, वह आपको मोबाइल ही प्रदान करता है। अगर आप धार्मिक रुचि रखते हैं तो ऐसे में भी आप विभिन्न सामग्री से अपने मन को, चित्त को शांत कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी अभिभावक को पढ़ाई के लिए बच्चों को दी गई मोबाइल फोन पर निरंतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की सामग्री के साथ ही समाज में विकृति पैदा करने वाली सामग्रियां भी इस मोबाइल पर उपलब्ध हैं, जो बच्चों के लिए बुरा लत साबित कराती हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी विकास की गति को बढ़ाने के साथ साथ इसे भटका भी सकता है। मोबाइल आपके स्वास्थ्य के साथ ही आपकी नींद का भी दुश्मन साबित हो सकता है। ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से मोबाइल से निकलने वाली नीली किरणें, जिन्हें ब्लू लाइट कहते हैं, आपकी नींद में खलल डाल सकता है। आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोबाइल का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को स्वयं आकलन करना चाहिए कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा साथी है या एक छुपा हुआ दुश्मन। आज की तारीख में व्यक्ति घंटों घंटों मोबाइल चलाता है, एक चीज देखने के लिए मोबाइल का उपयोग प्रारंभ करता है और मोबाइल पर उपलब्ध सामग्री से वह दिशा विहीन हो जाता है। अनर्गल सामग्रियों से आप सभी को बचना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि दिशा भटकाने वाली किसी भी सामग्री से मोबाइल के उपयोगकर्ता को स्वयं भी बचना चाहिए और बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन देना चाहिए। मोबाइल आपके मनोरंजन का भी बहुत बड़ा साधन है। ऐसे में लोग बहुत देर तक मोबाइल से हेडफोन को या ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करके गाना सुनते हैं, जो आपके कान के लिए और मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। अक्सर नौजवान वाहन चलाते समय मोबाइल को ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट करके वाहन चलाते हैं, गाना सुनते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस दुर्घटना में कई बार यह देखा जाता है कि लोगों की जान भी चली जाती है। दुर्घटना के बाद परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। जो कृत्य आपके परिवार को संकट में डाले, वियोग की ओर ले जाए, क्या उस तरह की कार्य करना आपकी बुद्धिमानी है? मोबाइल पर गाना या कोई संगीत सुन रहे हैं तो उस समय आप ड्राइविंग कतई ना करें, इससे

बचने की कोशिश करें। अगर कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगा है तो आपके आसपास की आवाज सुनाई नहीं देगी और आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस तरह की तमाम सावधानियां आप अपने जीवन को और संकट में डालने वाली बहुत सी बीमारियों से आप अपने को बचा सकते हैं। अगर चिकित्सक और एक्सपर्ट की बात करें तो उन सभी का कहना है कि ज्यादा फोन चलाने से आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। जो विशेषज्ञों की राय है उनके अनुसार आपको किसी भी सुविधा का लाभ तो पूरा उठाना चाहिए, लेकिन उनसे मिलने वाली विकृतियों से आपको बचना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में बड़ी अच्छाइयां हैं। जब आप मोबाइल का एक सीमित उपयोग करेंगे और घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार और मित्रों से संपर्क रखेंगे तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान आपको मिलेंगे। अकेलेपन से आप दूर रहेंगे। आपने देखा होगा पहले रात में माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के बीच बच्चे होते थे और परिजन अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे जो प्रेरणादायक होते थे। लोग गांव से लेकर शहरों तक चौपाल की जगह पर बैठते थे, पार्क में घूमने जाते थे, वहां बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा होती थी। किसी एक विषय पर की जाने वाली चर्चा से उपस्थित तमाम लोगों के विचार आते थे। इन विचारों से आप अपने मस्तिष्क में नूतन ज्ञान का सृजन करते थे, आपका ज्ञान बढ़ता था। लेकिन आज आपके मोबाइल ने आपको सीमित बना दिया है। सामाजिक समरसता व सामाजिक संपर्क से इस मोबाइल ने आपको दूर कर दिया है, जो आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है। मोबाइल की दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बाजार बन गया है। घर बैठे आप अपनी पसंद की चीजें मंगा सकते हैं। जरूरत की सामग्रियों के साथ आप अपनी पसंदीदा खाद्य पदार्थ यानी तैयार भोजन भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। लेकिन इस वैश्विक बाजारीकरण में गुणवत्ता और किसी भी प्रोडक्ट की विश्वसनीयता सदैव संदेह के घेरे में मानी जा रही है। मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि मोबाइल बुराइयां या विकृतियां ही नहीं दे रहा है, मोबाइल ने आपके जीवन की गति को तीव्र किया है। अगर इसके फायदे और एडवांटेज की बात करें तो दुनिया के लोगों से जुड़ना, अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को दूर तक शीघ्र पहुंचाना, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किसी भी तरह की जानकारी को प्राप्त करना, व्यापार, बिजनेस, चिकित्सा या यूं कह ले जीवन की समस्त जिज्ञासाओं के समाधान का संपूर्ण और एक परिपक्व मंच है, वो है मोबाइल। मोबाइल की व्यवस्था ने आपको पूरी दुनिया से इस कदर जोड़ दिया है जो आपके समय को बचा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी आपकी आवश्यकता आपकी जरूरत की पूर्ति का एक बड़ा साधन है। आज इसी मोबाइल की देन है कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। मिनटों में आप बड़े से बड़ा कार्य, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, या शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर जगह आप मोबाइल से लाभान्वित हो रहे हैं। हम सभी को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि जो हमें सुविधा हासिल है उनका अच्छे ढंग से उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को बचाते हुए विकास की ओर अग्रसर होना है। जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी यंत्र मोबाइल ने हम सभी को तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैकर और वायरस से सावधान रहना आप सभी श्रोताओं को बेहद जरूरी है। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं को अलर्ट करना चाहूंगा कि तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल दुनिया में साइबर स्कैम यानी साइबर से ठगी के मामले अत्यधिक देखे जा रहे हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक डिजिटल अरेस्ट स्कैम है। यह एक सामान्य साइबर धोखाधड़ी से अलग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस तरह के प्रकरण में, डिजिटल अरेस्ट स्कैम में, अपराधी फर्जी कानून प्रवर्तन अधिकारी या आईएएस आईपीएस बनकर किसी भी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट से मोटी रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाता है और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर रुपए ट्रांसफर करा लेता है, और यह सारी प्रक्रिया मोबाइल के द्वारा ही की जाती है। अक्सर समाज में आपको सुनने और जानने साथ ही देखने को मिलता है कि लाखों लाख करोड़ों रुपए डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। ऐसे में आपको मोबाइल का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन किसी भी स्कैम से बचना भी बेहद जरूरी है। कोई आपसे ओटीपी मांगे, कोई आपको वीडियो कॉल करके किसी तरह से डराए, धमकाए, अनर्गल बातें करें, कुछ अश्लील फोटो और वीडियो भेज करके आपको प्रताड़ित करे, तो
ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना होगा।

0: कई बार सेवानिवृत्ति लोगों और व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में आप सभी को मोबाइल का उपयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वह सावधानी आप अपने सेहत का ख्याल रखते हुए और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए भी कर सकते हैं। समाज में लगातार पुलिस प्रशासन और बैंक की ओर से डिजिटल अरेस्ट करके रुपए ट्रांसफर किए जाने के मामले में आम जनमानस को सावधान किया जाता है। आज मैं भी इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल अवश्य करिए, लेकिन मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
1: गौरी।
2: हाँ दीदी।
1: अरे भाई देखा कितना नीचे का सैलरी सदस्य जो न हो कि मोबाइल सुविधा या सेहत का दुश्मन, ये बात बताना है। बिल्कुल सही बात कही कि देखा आज जीवन का सबसे जो न कहला कि अभिन्न चीज हो गई है वो हो गई है मोबाइल।
2: हाँ।
1: मनई बिना मोबाइल के कहीं जात ना हो, कौनो ऐसा काम हो तो मोबाइल से होता, संपर्क भी हो तो मोबाइल से होता, और मनई का जो नुकसान भी होता वो भी
2: मोबाइल
1: से होता हुआ। तो कहे के मतलब ये हो कि भाई कौनो भी चीज का फायदा भी होला और नुकसान भी होला, लेकिन हमें जांच करना हो, हमें देखना हो कि ओकर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात कहना है ना कि ये समय जो ये डिजिटल अरेस्ट हो जाता हो, ओटीपी आवत हो, भाई मोबाइल तो सभी के हाथ में हुआ, लेकिन बहुत लोग ये समझ ही ना पाओ ना कि भाई ये ओटीपी आवत हो या क्यों हमसे बात करत हो तो ये के नियत से करत हो या कैसे नंबर आवत हो। तो आप लोग बिल्कुल एक प्रति सावधान रहे, खास करके अपने बुजुर्ग लोगों से हम कहल चाह कि भाई मोबाइल का तो लोग भी प्रयोग करत हो, उनके पास ही मोबाइल रहत हो, और आपके पास अगर इतना कोनो काल आवत हुए जो ने कि नंबर आप ना जाना ना कि वो आपसे बात करना चाहत हो, आपके बारे में जो ने पूछा चाहत हो, तो पहले आप ही सतर्क हो जाए कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो कि क्यों हमारे साथ धोखाधड़ी करत हो या कोनो ऐसा बात करत हो, और ना आपके समझ में आओ तो घर में जो बच्चा हुआ या जो जानकार लोग हो उनके दिखा दें केहू के अपने मोबाइल का नंबर ना बतावें। तो ये जो छोटी छोटी बात है ना गौरी, अगर एक ध्यान में रखल जाए तो जो बहुत कुछ ऐसा होत हुआ घटना होत हो, दुर्घटना होत हो, धोखाधड़ी इसे हम लोग बचल जा सकेला, जरूरत हो सचेत रहेगा।
2: बिल्कुल सही बात कहत हो दीदी। अब बुजुर्ग तो बुजुर्ग जौन घर का घर रहती नहीं उ लोग के भी ध्यान देवे के चाहे, काहे से कि घर के मनई बाहर रहत हुआ कहीं भी रहत हुआ तो उनके हाथे में भी मोबाइल पकड़ा जा दिया जाता कि कोनो ऐसा समस्या हो के कोनो परेशानी हो के तो तू फोन करके खबर ले लिया। लेकिन यही बीच में जीवन ई लोग बा तो फोन करके ई होता कि ओटीपी आई है, ओटीपी दे द हाई काम तुहरे मतलब उ कहने हैं, यही चक्कर में बहिन लोग दे देते हैं और फंस जाते हैं।
1: इतना नहीं हो गौरी, हम तो कहीं ना कि बड़की भौजी के हने के गांव में बात भइल कि भैया मोबाइल से एक फोन आयल कि उनके मनई का जो है कहीं दुर्घटना हो गई हो, इतना पैसा भेज दाए नंबर पे, ऐसा ऐसा बात हो गई हो, अब पता चला कि भैया के कुछ भइला ना हो, ये बेचारो घबरा करके पैसा ऐसा भिजवा देनी। तो भाई ये भी एक तरह का जो है आपके साथ धोखाधड़ी होता हो, समाज में लोग बहुत तरह का धोखाधड़ी करते हुए। तो मान ली आपकी अगर ऐसा कोई सूचना भी आवत हो कुछ तो पहले आप ओकर जांच कर लें, फोन कर लें, पता कर लें उनके ऑफिस में उनकी जगह पर कार्यस्थल पर कि भाई ये तरह का फोन आयल है का ऐसा बात हो कि ना हो, तुरंत आप घबरा करके वो नंबर पर ना पैसा दे ना कोनो आप अपन जानकारी।
2: बिल्कुल सही बात कहते हैं दीदी। देखिए बात विचार तो हो गई और बड़ा बढ़िया बढ़िया जानकारी बहन लोग सुननी है और सचेतले भी हुई है, लेकिन हम कही ना कि जब ले मन मनसाई ना होला तब ले बड़ा सुना सुना लागेला। तब
1: हाँ तो हम समझ गए कि गौरी का कह चाहते हैं, तो लाल लगे हाथ एक बढ़िया सा जनता लोग के गीत सुनाती सुनचा।

0: गौरी।
1: हाँ दीदी।
0: गीत तो हो गई, अब कहें कि कुछ जल्दी जल्दी खाए पिए की बात हो जाए, अपने सेहत का भी बात हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो दीदी। आ देखा मौसम के अनुसार आदमी के खाए पिए के चाहिए हो, मौसम के समय जितना ई मिलत साग सब्जी है, फल फूल है, तो इससे अपन स्वास्थ्य भी सही रहेला और मनई के कहीं ना कि बहुत कुछ मिलेला, जैसे कि ओके सुकून मिलेला, फायदा रहेला, ताकि ओकर कोनो नुकसान ना होखे। काहे से कि ये समय जेवन है बरसात के समय आ गई है, अब धीरे धीरे देखा वो बाजारे में बहुत कुछ मिला था दीदी।
0: अरे भाई बहुत कुछ मिलत हो, जामुन मिलत बा, फल तरह तरह के मिलत हो, लेकिन कहीं ना एक सदाबहार फल बा जोन की हमेशा मनई के जीवन में काम आवला, हमेशा अगर स्वास्थ्य अच्छा रखेला, और वो है पपीता। और
1: एकदम
0: पपीता के भाई कच्चा भी लोग प्रयोग करे ना, और के पका के भी लोग प्रयोग करे ना, कच्चा का सब्जी बना ला तो ओके खाला। और पपीता का जो पकल वाला हिस्सा है वो तो अपने सेहत बदे हर तरह से फायदा करेला। काहे से मैं कह जाना कि विटामिन सी और विटामिन ए ये दोनों मिलेगा, और साथ ही साथ लोग कहना कि पपीता खा आँखें की रोशनी बढ़ेगी।
1: हाँ दीदी, और रोशनी भी बढ़ेला और पाचन शक्ति भी मजबूत रहेला। और तो और कहीं कि अपन बहन लोग के जवनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा चिंता रहेला ना, ओके त्वचा में भी बहुत निखार आवेला।
0: अरे हम कहलू खूबसूरती के बाद तो कहीं ना कि जब पपीता छिलने के बाद जो गुदा होला ओके निकाल ला,
1: हाँ
0: ओके कुछ ना करे के हो,
1: हाँ
0: खाली ओके बढ़िया सा जो हो मसल के अपने चेहरा पर थोड़ा देर लगा ला, और लगैले के बाद जो हो कि ठंडा पानी से धो के अपन चेहरा साफ कर ला, देखा ना अपने तोरे चेहरा पर कितना चमक आ जाला।
1: बड़ी नीक के जानकारी दिलु दीदी। हम तो जानत हैं कि बहिन लोग ई नुस्खा तो जरूर अपनई हैं, काहे कि बिना मेहनत कह आराम से अपन पपीता खइबो करिए और लगइबे करिए।
0: हाँ इतना नहीं, एक बात और होना कि जैसे पेट साफ ना रहना, कब्ज का

0: शिकायत रहला तो लोग कहना कि भाई पपीता का सेवन करा जैसे कि पेट साफ हो जाए, तो कब्ज के दूर करे में भी पपीता बहुत सहायक होला।
1: हाँ, और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सही है दीदी। इसमें फाइबर, पोटेशियम, ये सब जितना मौजूद रहेला तो ऐसे मनई के स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेला।
0: और इतना नहीं, एक बात हम और कहल चाहे बहन लोग ना कि भाई लोग कहना कि हमारा वजन बढ़त हुआ है,
1: हाँ
0: वजन बढ़त हुआ है, तो भाई कहल जाना कि खान पान से मनई अपन जोन हो वजन नियंत्रित रख सकला। तो एकरे बदे आपके ई जरूरी हो कि पपीता में जोन हो कैलोरी कम पावल जला, मीठा भी कम होला, तो ऐसे जोन हो ना कि आपका वजन भी नियंत्रित रही और साथे साथे आपके जोन हो भरपूर ऐसे जोन हो कैलोरी भी मिले जैसे कि आप काम काज
1: बिल्कुल
0: करके।
1: सही बात कहत हो दीदी। लेकिन देखो, जैसे अभी हमने का बतिया तो नहीं है जा कि कोनो चीज का जितने फायदा होला वैसे ही नुकसान होला। तो बहुत लोग ऐसे हुई हैं जेके इकरा से नुकसान होते हो, कुछ एलर्जी महसूस होते हो, तो बिना डॉक्टर के जानकारी के कोनो काम ना करे के चाहे। और खास करके कहल जाला दीदी कि जब गर्भावस्था होके तो उस समय पपीता का सेवन कम करे के चाहे।
0: बिल्कुल बड़ी पते के बात कहलू है भाई, कोनो भी अगर फल ऐसा हो जैसे कि आपके लगे कि हमें ना जो फायदा करत हो या खाए के चाहिए कि ना चाहिए, तो ऐसे आप डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लें और कहें कि भाई बत कही तो हम लोग खत्म ना हो बहन लोगों के साथ है, लेकिन कहें कि घड़ी भी अपन समय अपन काम करे ला कि भाई चले के बिला होते हुए तो चला चल जाए। नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं विश्वनाथ और साथी। इनकी आवाज में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गंगा गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विश्वनाथ और साथी के गाय लोकगीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इनकी आवाज में खेमटा।

अभी आप सुन रहे थे खेमटा। विश्वनाथ और साथी के गाए इस खेमटे के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम

0: से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसने बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावड़ीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है।

यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशां।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम कहकशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ हूँ मैं शिखा। आइए कहकशा की ये महफिल सजाई जाए और सुनी जाए ये नज़्म।

मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो, इश्क भी तुम हो और जुनू भी तुम ही हो, एहसास तुम हो, प्यास भी तुम हो।

छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल तेरा जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा।

जब तेरे खत सिरहाने रखते हैं, लगता है जैसे खजाने रखते हैं। तुमको तनहा चलने की आदत क्यों है, हम तो साथ अपने जमाने रखते हैं। उसकी बेरुखी का गम नहीं होता, दिल को बहलाने के बहाने रखते हैं।

धड़कते हुए दिलों का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम। धड़कते हुए दिलों का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम। तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो तुम।

उसके नूर से दिल में दिया जलाए बैठे हैं, क्योंकि वो नजरें नजरों से लगाए बैठे हैं। गहरे नीले ताल में चांदनी का अक्स, हिलते डुलते पत्ते उठाए बैठे हैं।

अभी आप सुन रहे थे कहकशा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। कुछ ही पलों में संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, तो हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे, जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका, इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए

0: ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ
1: जी। यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
0: जी बिल्कुल ठीक बहुत बता जी रहे हैं।
1: तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम,

0: हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजुरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली। इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
0: जी
1: मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
0: जी
1: इसमें। जी जी जी
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
0: जी।
1: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
0: जी
1: जी,
0: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली?
1: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
0: अच्छा।
1: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं, कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
0: क्या बात है सर
1: जी।
0: तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
0: बाहर
1: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजुरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: जी
1: एक, जी जी जी
0: तो
1: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर, बहुत जबरदस्त
0: जी
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
0: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा

0: उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह से उन लोग को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है
0: जी
1: उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें।
1: खात्मा करें।
0: जी लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
0: जी
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या
1: डर
0: बात
1: नाम
0: है सर।
1: का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, उसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला,
0: जी
1: गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे,
0: अच्छा
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी
1: जी
0: और
1: जी
0: दो बार आपको मिला है,
1: दो बार गैलेंट्री
0: और
1: मिला।
0: उसके
1: जी
0: अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स आपके जो अवार्ड हैं वो ज़्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन
0: जी
1: काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चला।

0: था। तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे लीड मिलते गया, और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
1: जी।
0: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
1: 50
0: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
1: अच्छा।
0: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
1: ओके।
0: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
1: जी,
0: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें,
1: अच्छा।
0: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी
1: जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था?
0: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
1: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
0: हमने नहीं, हमारी टीम और
1: जी,
0: हाँ सब
1: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिल करके।
0: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
0: जी।
1: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
0: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप। तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
0: जी जी जी हाँ।
1: तो ये जो जोश था, ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
1: जी।
0: फिर
1: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड, कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
1: अच्छा।
0: में ज्वाइन किया जी
1: जी। तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
1: अच्छा।
0: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ
1: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर। फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा।
0: असम जल रही थी NDFE का उससे।
1: अच्छा।
0: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन SSB बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें NDFE कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह, हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है, ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी।
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सलोनाबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत

0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से
1: अच्छा,
0: शुरुआत हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही।
0: हाँ असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई
1: थर्टी
0: गांव
1: फर्स्ट
0: में हुआ।
1: बटालियन
0: जी जी जी
1: अच्छा,
0: जी
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
0: हाँ 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
1: अच्छा
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई
1: अच्छा
0: असम में, आ गई हॉली में। जी
1: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं।
0: हाँ 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी
0: हुई है।
1: अच्छा, एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहां पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है।
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है
1: जी
0: उसमें मेरा
1: जी
0: कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता
1: जी
0: है। जी
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक
0: पचास
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ,
1: तो
0: लेकिन
1: ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज़ को हम याद करते
1: अच्छा,
0: हैं। जी
1: तो
0: हाँ
1: ये सर जुलाई 2020 में हुआ था।
0: जी
1: जी तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं?
0: जी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
1: जी
0: जी जी जी
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी मेन तो आप सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना
1: जी
0: देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन
1: जी
0: ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
0: हाँ जो
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, वो
1: जी मिल जाए।
0: टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है,
1: जी जी
0: उस पर उतना विश्वास नहीं। लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है जो, वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज यहां जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो अपग्रेडेशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो
1: जी, तो
0: आप
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ ग्रेजुएशन क्राइटेरिया।
1: जी
0: जी
1: सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ऑबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश
1: जी
0: की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी
1: जी
0: देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा
0: जी
1: देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर,

0: सनातन कुमार हैं ये, जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें?
1: फोर्स से ही मैंने जी।
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी। अच्छा। इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा।
1: खाना, और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है, आपको कैसे चलना है,
0: ओके,
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज, और
0: अच्छा।
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा।
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: से कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके?
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी। जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है?
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
0: अच्छा।
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में और वो भी 72 घंटे
1: इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है।
0: 1 महीना
1: जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है?
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा।
1: अचानक सब चीज होता है,
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके,
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल।
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
1: हाँ, तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
0: मोटिवेटेड रखना।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड।

0: फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में उनको ढाला जाता है।
1: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
1: जी
0: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी, आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी,
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर पकड़ना है, जी उसके
1: अच्छा
0: उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें वो भी आपने किया हुआ है?
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जी
1: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
1: जी
0: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए। जी
1: सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आप को मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
0: जी
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं?
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये,

0: जी
1: ये
0: सर, ये
1: लक्ष्य।
0: किस तरह से होता है ये, इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा में
0: अच्छा,
1: जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है
0: जो
1: उनका,
0: सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें
1: हाँ
0: सर्विस के
1: जो
0: लिए।
1: अच्छे काम करते हैं उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा। उसके
0: ओके,
1: बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा। और उसके अलावा सर, डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है। और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है जिनका ऑपरेशनल
0: जी
1: अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर, आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए। हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी
1: टीम के साथ मिलके, हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो
0: जी
1: नाम हमेशा रोशन रहे।
0: रोशन रहे, क्या
1: जी
0: बात है
1: जी
0: सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं हैं, तो उनको तुरंत
0: जी
1: आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर, एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज, ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर, जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें, ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर, ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक करने के बाद, आप मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं।
0: जी, और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है।

0: तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी उनकी सभी उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद, झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहें रेनबो, दिल से दिल तक।

241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अवधि गीत। कलाकार हैं मालिनी अवस्थी।

0: इतनी पारंपरिक पुरानी ठुमरियों की कजरी है, सारे बड़े लोगों ने इसको गाया है और विशुद्ध लोक रचना।
1: बाबा हठ कई ले

श्रोताओं, इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं प्रोग्राम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अवधि गीत। कलाकार हैं मालिनी अवस्थी।

0: चलो गिले शिकवे यहीं छोड़ देते हैं, रूठे लम्हों को आज यहीं मोड़ देते हैं। दोस्ती की राह मुस्कान से ही सजती है, नाराजगी तो बस पल दो पल का मेहमान लगती है।
1: कुछ रिश्ते दिल के इतने करीब होते हैं, जहां सॉरी से ज्यादा चलो चाय पीते हैं नसीब होते हैं। एक प्याली चाय और दो मीठी सी बातें, बस यूं ही सुलझ जाती है दिल की सारी शिकायतें।
0: तो फिर आज ना कोई तकरार ना कोई जंग, चलो कर लें दोस्ती की एक प्यारी सी संधि इसी के संग।
1: हाँ, क्योंकि रिश्तों की असली जीत वही कहलाती है जो अपनों को हराए नहीं, उन्हें हमेशा गले लगाती है। क्यों, सही कहा ना?
0: बिल्कुल, और अब बारी उस राज से पर्दा उठाने की आती है जिसका इंतजार हर महफिल में हो ही जाती है। आखिर आज के कार्यक्रम की बागडोर किन दो साथियों के हाथ में नजर आती है।
1: अरे हाँ भाई, ये गिले शिकवे के चक्कर में तो हम भूल ही गए बताना। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शिवानी।
0: और सौरभ का नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: वैसे शिवानी, हमारी दोस्ती की सबसे खास बात क्या है पता है?
1: क्या तुमसे बातें करना और तो दोस्ती निभा लेना।
0: देखा, बात शुरू भी नहीं हुई और ताना शुरू।
1: अरे, दोस्ती में ताने नहीं होंगे तो क्या रोज आप कैसे हैं वाला इंटरव्यू चलेगा?
0: एक तो भाई तुम्हारी ये ताने मारने की आदत, भाई क्या ही बताऊं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी मोहतरमा, हमारी बहसें बड़ी खतरनाक होती है।
1: हाँ, 5 मिनट तक तो लगता है अब कभी बात नहीं होगी।
0: और फिर 6ठे मिनट में तुम कहोगी चाय पिया जाए।
1: हाँ, क्योंकि दोस्ती में आखिरी शब्द ईगो का नहीं, चलो छोड़ो का होना चाहिए।
0: सही कहा, दुनिया में जितने रिश्ते बचे हैं ना, उसमें आधे तो इसी चलो छोड़ो की वजह से ही बचे होंगे।
1: बिल्कुल, चाहे दो दोस्त हो, दो परिवार हो या फिर दो देश, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए टकराव से ज्यादा ना सौरभ जरूरी होते हैं बातचीत की मेज पर बैठना।
0: और इतिहास में भी एक ऐसा ही पल आया था शिवानी, जब लंबी तलखियों के बाद बातचीत का रास्ता चुना गया था।
1: जी हाँ, उसी ऐतिहासिक पहल को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। आइए इसकी कहानी समझते हैं।
0: अरे अरे थम जाओ शिवानी, थम जाओ, समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गीत संगीत भी तो हो जाए ना।

धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अवधि गीत। कलाकार थी मालिनी अवस्थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
7: हाँ जी, तो भाई गाने के पहले शिवानी समझौते

0: से रिलेटेड कुछ बातें कर रही थी, याद है
1: हम्म,
0: ना दोस्तों आपको? हाँ
1: याद है?
0: हाँ तो शिवानी एक बात बताता हूँ,
1: हम्म,
0: शिमला का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है तुम्हें?
1: मैं बताऊं? ठंडी हवाएं, देवदार के पेड़, गर्मा गर्म चाय और हाथ में कैमरा लेकर घूमते पर्यटक।
0: आय हाय हाय हाय, तुमने तो शिमला ही पहुंचा दिया मुझे। वैसे आजकल तो लोग शिमला सिर्फ घूमने, सुकून पाने और खूबसूरत यादें बनाने के लिए ही जाते हैं।
1: लेकिन सौरव, बहुत कम लोग जानते हैं कि इन शांत वादियों ने इतिहास के एक बेहद अहम पल को भी गवाही दी है।
0: जी हाँ, यही शिमला कभी दो पड़ोसी देशों के रिश्ते में नई उम्मीद का गवाह बना था। यहाँ हुई एक मुलाकात ने इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दोस्तों शिमला समझौते की। ये समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था।
0: जी हाँ दोस्तों, इस समझौते की पृष्ठभूमि थी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की हिरासत में थे। ऐसे समय में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या अब युद्ध जारी रहेगा या फिर बातचीत का रास्ता चुना जाएगा?
1: इसी सवाल का जवाब बना शिमला समझौता। दोनों देशों ने तय किया कि भविष्य के विवादों को युद्ध नहीं, बल्कि द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC का नाम दिया गया।
0: यही वजह है कि शिमला सिर्फ बर्फ, पहाड़ और पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी याद किया जाता है। शिवानी, एक बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन पर्यटन और खेल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना?
1: बिल्कुल, पर्यटन हमें नई जगहों से मिलवाता है तो खेल नए जज्बों और नई प्रेरणाओं से। एक सफर प्रकृति का होता है तो दूसरा हौसलों का।
0: और दोनों में रोमांच भरपूर होता है। फर्क बस इतना है कि एक में लोग पहाड़ों की ऊंचाइयां नापते हैं तो दूसरे में खिलाड़ी अपनी सीमाएं।
1: लेकिन जरा सोचिए, अगर ये रोमांचक दुनिया तक पहुंचे ही नहीं, तो क्या लोग किसी खिलाड़ी के संघर्ष, किसी रिकॉर्ड या किसी ऐतिहासिक जीत से जुड़ पाएंगे?
0: अरे शिवानी, बिल्कुल नहीं। मैदान में खिलाड़ी इतिहास रचते हैं, लेकिन इस इतिहास को घर घर तक पहुंचाने का काम खेल पत्रकार करते हैं। उनकी रिपोर्ट, तस्वीरें और कमेंट्री ही करोड़ों लोगों को खेल से जोड़ती है।
1: बिल्कुल, यही वजह है कि हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 जुलाई को ही क्यों चुनी गई थी?
1: दरअसल दोस्तों, 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यही संस्था दुनिया भर के खेल पत्रकारों का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन मानी जाती है।
0: और जब इस संस्था ने 1994 में अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई, तब से 2 जुलाई को ही विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।
1: इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के समर्पण, निष्पक्षता और साहस को सम्मान देना है। ये वे लोग हैं जो सिर्फ स्कोर नहीं बताते, बल्कि हर जीत के पीछे की मेहनत, हर हार के पीछे का संघर्ष और हर खिलाड़ी की अनकही कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं।
0: इसीलिए अगली बार जब आप किसी मैच का रोमांच महसूस करें तो खिलाड़ियों के साथ साथ उन खेल पत्रकारों को भी धन्यवाद कीजिएगा जिनकी कलम से कैमरे ने उस पल को आपके दिल तक पहुंचाया। शिवानी, तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी से उसका पसंदीदा गाना पूछना, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई पूछता है, दिमाग में एक नहीं 50 गाने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं।
0: सही कहा। और मजेदार बात यह है कि जो गाना कल तक फेवरेट था, आज नया वाला उसकी जगह ले लेता है।
1: लेकिन कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते, बस उसकी वजह बदल जाती है।

0: पहले उसकी धुन अच्छी लगती थी, फिर उसके बोल समझ आने लगते हैं।
1: वाह वाह वाह, तुम तो थोड़े शायराना हो रही हो। और बताऊं, और कुछ गाने से तो हमारी यादें जुड़ जाती है, क्यों? कोई सफर याद आ जाता है, कोई दोस्त, कोई स्कूल का दिन, या फिर यूं ही चाय की एक प्याली भी।
0: यही तो संगीत की सबसे प्यारी बात है। बस एक ही गाना, लेकिन हर शख्स उसे अपनी कहानी की तरह सुनता है।
1: और शायद इसीलिए हर किसी के दिल में एक गीत जरूर होता है जिसे सुनते ही वो कहता है, बस यही मेरी पसंद है।
0: तो आइए अब आपकी उसी पसंद को देते हैं सुरों की उड़ान,
1: पेश है हमारा खास सेगमेंट मेरी पसंद।
0: जहां बजेगा वही गीत जो आपके दिल के सबसे करीब है। सुनिए मेरी पसंद से ये गीत।

0: जी दोस्तों, तो शाम होते ही किसी को याद किया या नहीं किया? खैर, आपने याद किया हो या नहीं किया हो, हमने याद कर लिया है आपको, और याद कर लिया है आज के शब्दों को, क्योंकि दोस्तों अब वक्त है यूथ डायरी के उस हिस्से का जहाँ हर दिन हम अपने शब्द संपदा में जोड़ते हैं दो नए और उपयोगी शब्द। और आज का पहला हिंदी शब्द है अधिसूचना।
1: तो दोस्तों, अधिसूचना का अर्थ हम आपको बताते हैं किसी महत्वपूर्ण सूचना या निर्णय की आधिकारिक घोषणा।
0: दोस्तों इसके समानार्थी शब्द हैं सूचना, घोषणा, विज्ञप्ति या नोटिस।
1: दोस्तों, इसे एक वाक्य में समझें तो हम कहेंगे विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नई अधिसूचना जारी की है।
0: और अब बढ़ते हैं आज के इंग्लिश वर्ड की ओर, जो है ब्रेविटी,
1: जी
0: जिसके
1: हाँ
0: स्पेलिंग है BREVITY।
1: दोस्तों, ब्रेविटी का अर्थ है कम शब्दों में प्रभावशाली और स्पष्ट ढंग से अपनी बात कहना, यानी कि संक्षिप्तता। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्सिशन और कम्पैक्टनेस, और हिंदी में इसके समानार्थी शब्द होंगे संक्षिप्तता, लाघव या संपेक्ष, संक्षेप। इसका एक उदाहरण भी सुनिए। अ गुड स्पीकर वैल्यूज ब्रेविटी बिकॉज क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव, यानी कि एक अच्छा वक्ता संक्षिप्तता को महत्व देता है क्योंकि स्पष्ट और कम शब्दों में कही गई बात अधिक प्रभावी होती है। तो दोस्तों, शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, इसलिए हर दिन एक नया शब्द सीखिए क्योंकि समृद्ध शब्दावली ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान बनती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब बात करते हैं उस पहचान की जो मिलती है आपके ज्ञान, आपके सूझबूझ और सही जवाब से।
1: तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली खेल, जहां आपकी एक सही सोच और एक सही जवाब दिलाएगा आपको खास पहचान।
0: जी हाँ, और ये कोई साधारण सवाल नहीं होता, बल्कि आपके ज्ञान और जागरूकता की छोटी सी परीक्षा होती है। हाँ हाँ भाई, आप सबका पसंदीदा क्वेश्चन ऑफ द डे में।
1: लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले जोरदार तालियां हो जाए उन साथियों के लिए जिन्होंने कल के सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देकर अपनी शानदार पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल सौरभ, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कल के सवाल पर। दोस्तों, हमने आपसे कल प्रश्न किया था कि वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी, और जिसका सही जवाब है कि भारत में वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत 1950 में की गई थी। और जिन लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है उनके नाम हैं प्रवीण चौहान, खरगोन मध्य प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ठाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामाबाई रायकवार।
1: इसी के साथ दोस्तों, चंदा चंदौली से दीपेश

0: वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपरलोड, सरगांव, छत्तीसगढ़, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से, मुकेश कुमार प्रजापति, सिगरा, वाराणसी से।
1: भाई आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाइयां। आपकी यही लगन और ज्ञान आपको हर दिन नई पहचान दिलाता रहे।
0: तो अब बारी है आज की चुनौती की। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सवाल भी उतना ही दिलचस्प है।
1: ध्यान से सुनिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो है,
0: शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सवाल एक बार फिर से, शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों अब देर मत कीजिए, अपना जवाब हमें इंस्टाग्राम यूथ AIR वाराणसी या फिर हमारा ईमेल पता youthairvns@gmail.com पर भेजिए।
1: क्योंकि क्या पता अगली बार जब हम विजेताओं के नाम लें तो उसमें आपका नाम भी शामिल हो, इसलिए जल्दी कीजिए, जवाब भेजिए और बन जाइए हमारे अगले QOTD के विनर।
0: बिल्कुल। वैसे शिवानी क्या कहती हो, मुझे लगता है कि जब तक हम बारिश को सेलिब्रेट ना करें ना, तब तक शायद बारिश हो ही ना, या फिर यूं कहो तो यूं ही विलंब होती रहेगी।
1: बिल्कुल, ये मुझे भी लग रहा है, तो क्यों ना स्टूडियो से बैठकर ही सेलिब्रेट किया जाए बारिश को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बारिश का आह्वान भी किया जाए।
1: और वो कैसे होगा?
0: वो होगा इस प्यारे से संगीत गीत के साथ।

0: दोस्तों, इतिहास जानना और उसे समझना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि जब हमें हमारे इतिहास का पता होगा, तभी हम लोगों को उस बारे में बता पाएंगे दोस्तों।
0: और वैसे भी कोई भी इतिहास यूं ही नहीं बनता, उसे बनाने का प्रयास किया जाता है।
1: 2 जुलाई को भी बहुत से ऐसे कार्य हुए जो इतिहास के पन्नों में शामिल हो गए। तो चलिए फिर देखते हैं ऐसा क्या हुआ बीते हुए वर्षों में जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2 जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
1: और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि 2 जुलाई 1777 में इस दिन अमेरिका के वर्मूट शहर में दास प्रथा का अंत हुआ था।
0: और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 2 जुलाई 1861 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन भी हुआ था।
1: और 2 जुलाई 1877 में हरमन हेन्स, एक जर्मन स्विस कवि थे, 1946 में हरमन हेन्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
0: और दोस्तों, पता है आपको, 2 जुलाई 1916 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना भी हुई थी।
1: तो ये इतिहास की बातें आपको पता थी या नहीं? अगर नहीं पता थी तो हमने आपको बता दी। और दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको जाननी चाहिए। तो आपके युवा साथी तो आपको बताते ही हैं, बट आप अपने तरीके से भी इतिहास को जानने का प्रयास किया करिए।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों, अब अगर करियर बनाना है तो उसकी सूचनाओं से भी अपडेट रहना होगा।
0: वैसे तो जो हम रोज करते हैं, आपको रखते हैं अपडेट रोजगार की सूचना से। और चलिए जान लेते हैं आज की रोजगार सूचना भी।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वन संरक्षक और वन्य जीव रक्षक पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 708 पदों के लिए है।
0: जी हाँ दोस्तों, UP SSC आवेदन फॉर्म 30 जून 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2026 तक मान्य होगी।
1: तो दोस्तों, इस भर्ती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UP SSC.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और फिलहाल बातों और जानकारियों का सफर अभी लंबा है, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं थोड़े मनोरंजन के सफर पर।

0: हाँ जी दोस्तों, सुनिए तो, क्योंकि अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत नई मंजिल के बारे में जानने का।
1: बिल्कुल शिवानी, जब कार्यक्रम सभी के लिए है तो जानकारियां भी सभी के लिए होनी चाहिए। तो जो भी हमारे अल्पसंख्यक युवा साथी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी लाभप्रद है।
0: दोस्तों, नई मंजिल योजना अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु

0: प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 17 से 35 वर्ष के बीच अल्पसंख्यक युवाओं को औपचारिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8वीं या 12वीं तक और बाजार उन्मूलन कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना है।
1: दोस्तों, हम आपको बता दें कि औपचारिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8वीं से 10वीं तक, जैसा कि शिवानी ने अभी आपको बताया, अब यह उन युवाओं की मदद करती है जो स्कूल छोड़ने वाले, जिन्हें हम ड्रॉपआउट्स भी कहते हैं, या फिर जिनके पास पारंपरिक मदरसा शिक्षा है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें।
0: साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी, जैसे प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को उपयुक्त रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।
1: दोस्तों, नई मंजिल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।
0: तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी।
1: बिल्कुल। शिवानी, कभी गौर किया है जब हम किसी शहर में घूमने जाते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं?
0: बिल्कुल, वहाँ की साफ सुथरी सड़कें, पार्क, घाट, बाजार, और अगर जगह साफ हो तो उसकी खूबसूरती अपने आप दिल जीत लेती है।
1: लेकिन मजेदार बात यह है कि जब वही बात अपने घर, अपने शहर की आती है, तो कई लोग सोचते हैं कि एक रैपर फेंक देने से क्या फर्क पड़ेगा,
0: और यही सोच सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती है। क्योंकि गंदगी कभी एक साथ नहीं फैलती, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटी सी लापरवाही से होती है। सौरभ,
1: सही कहा शिवानी, मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक पार्क में एक बुजुर्ग रोज सुबह टहलने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा चॉकलेट खाकर उसका रैपर जेब में रख रहा है।
0: बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा ही होगा, बेटा डस्टबिन तो काफी दूर है, फिर जेब में क्यों रखा?
1: बच्चे ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, कहा, मम्मी कहती है कि सड़क हमारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है, डस्टबिन मिलेगा तब फेंक दूंगा।
0: सोचिए दोस्तों, इतनी सी उम्र में और इतनी बड़ी सीख। सच तो यह है कि देश को बदलने के लिए बड़ी उम्र नहीं, बड़ी सोच चाहिए।
1: और यही सोच लेकर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं था, बल्कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना था।
0: इस अभियान ने हमें सिर्फ झाड़ू उठाना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि सार्वजनिक स्थान भी उतने ही अपने हैं जितना अपना घर। सड़क, रेलवे स्टेशन, पार्क, बस स्टैंड, नदी किनारे, ये सब हमारी साझा जिम्मेदारी है।
1: लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या स्वच्छता सिर्फ नगर निगम, सफाई कर्मचारियों या फिर सरकार की जिम्मेदारी है?
0: बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपना कूड़ा सही जगह डालना शुरू कर दे तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। सफाई कर्मचारी हमारा कचरा साफ करने के लिए हैं, हमारी लापरवाही उठाने के लिए नहीं।
1: बिल्कुल, और स्वच्छता का मतलब सिर्फ कूड़ा न फैलाना भी नहीं है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना, पानी के स्रोतों को गंदा न करना, दीवारों पर थूकने और लिखावट से बचना, ये सब भी स्वच्छ भारत का हिस्सा है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे इसी संदेश के साथ आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें, न हम गंदगी फैलाएंगे, न किसी को फैलाने देंगे। अगर कहीं डस्टबिन न मिले तो कूड़ा अपने साथ रखेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं फेंकेंगे। इस संदेश के साथ आप सुन रहे थे आज शिवानी
1: और मुझे यानी कि सौरभ को।
0: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने की उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के विस्तार बदे सरकार कोनो कोर कसर नहीं छोड़ रहल हो। यही कड़ी में

0: संयम गतिशक्ति के तहत कानपुर से कबराई के बीच एगो नया फोर लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के मंजूरी दिया गई। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहने कि ये प्रोजेक्ट कानपुर भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का एगो बढ़न हिस्सा हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में कार्य भेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठकी में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के लगे 118 किलोमीटर लमहर एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण के मंजूरी मिलल। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 के अधिसूचित कर दिया हो। इन योजना 29 जून से प्रभावी हो गई बा। नया योजना 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का जगह ले।
1: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन डाउन, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकन में रहे वाले लोगों के अब अपने घरे के लगे नया जमाना का रेडियोलॉजी और इमेजिंग सेवा कर सुविधा मिली। एक बदे प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री निधि के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर दस्तखत कर दे हो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित कुमार घोष बतौलन कि एमओयू के मुताबिक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन, 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन और डिजिटल मेमोग्राफी टोमोसिंथेसिस डीबीटी मशीनिंग के आपूर्ति स्थापना और संचालन कई जाए। केंद्र सरकार भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर के शुरुआत कैले के मामला में मेटा के नोटिस दिए हवे।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अयोध्या के रोनाही थाना क्षेत्र में मुबारकगंज के लगे अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आज सवेरे एगो कार और ट्रक के टक्कर में एक परिवार के 3 जने की मौत हो गई, वहीं 4 जने और घायल हुए। ये दुर्घटना उस समय भेल जब लखनऊ से सिद्धार्थ नगर जा रहल कार पाछे से एगो ट्रक में लड़ गए। राज्य में मानसून के आइले से लोगों के भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलल बा। एगो रिपोर्ट।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने रहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग प्रदेश में आज वो कहीं कहीं भारी बरखा, बिजली गिरले और तेज झोंकेदार बिहार चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर लिया हो। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 आज से शुरू हो गई। ये परीक्षा आवे वाला 4 जुलाई ले प्रदेश के 60 जिलों में बनावल गई 955 परीक्षा केंद्रन पर आयोजित कर जा रहा हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
4: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

0: आज रात 10:30 पर आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में पशुओं में लंपी बीमारी कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा विश्वनाथ और साथियों का गाया लोकगीत। रात 8 सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी दिव्यांशी द्विवेदी। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग, रात 8:15 पर रसमाधुरी और रात 10:00। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 3 जुलाई 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में ज्वार की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत आप सुनते हैं प्रातः 6:10 पर कार्यक्रम आराधना के अंतर्गत। प्रातः 6:25 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम में बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ की 136वीं कड़ी का प्रसारण होगा। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत 7:31 पर सुनिएगा विदुषी कला रामनाथ का वायलिन वादन, दिन में 12:45 पर विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन और रात 10:30 पर पंडित जसराज का गायन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:30 पर और रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी पूजा बसाक। दिन में 1:15 पर गिरिलक्ष्मी कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनिएगा गीत संगीत युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में इंद्रसेन सिंह से खेती में अनुभव पर बातचीत के अलावा सुनिएगा अमलेश कुमार पांडेय का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10:00 खेल पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दूसरा आदमी का गीत। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से हम फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आपको सुचारू रूप से नहीं सुनवा सके। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2,000+ परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा औषध रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा सानेता काइचित्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते। सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गतसायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमान समये समग्रं विश्वम् आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान

0: जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिम रूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22,800-4,000 तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूतिः वीबीजी रामजी अधिनियमः 20-25 आजीविका सुनिश्चिततायाः ग्रामीणाजीविकायाः सुदृढीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिकादेशः 2,200 वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पञ्जीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1,242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचों
1: पंचों
0: राम
1: राम राम भैया।
0: राम। और बिरजू भैया,
1: ठीक भैया, और बताओ अपन हालचाल।
0: बस हाल चाल तो ठीक बा भैया। यह है कि दऊ जोन है, दो चार दिन से लगत है कि अपने पर जोन हम मेहरबान हो गए हूँ भैया। आ एकरे बदे ये देखा, किसान भाई लोगन बदे भी बढ़िया हो, और जोन मनई लोग भी हैं उन्हों लोगन के बड़ा सुकून मिलल है गर्मी से।
1: देखा भैया, एक दिन ऐसे झाए फूक के

0: अब इस संकेत देत हो कि देखा भैया गढ़हा उड़ा किसान भैया लोग जो हमारे खनले बाणा आ जितना हमारे पंच भैया हों तो अब पेड़ ओड़ लगावे के वो लोग भैया प्लान अपना कह लें।
1: भैया एक चीज़ देखा, ये जो पिछला समय बीतल है बिरजू भैया, उम्मा ये ध्यान में आयल है कि भाई हमहन के घरे के आसपास काश पेड़ रहत, जौने डहरी डाणे जात है जा ओकरे किनारे किनारे पेड़ रहत तो कितना नीमन रहत।
0: देखा भैया हम जब बचपन में जब पढ़े जाना हो तो रास्ता पैरा से जाए जा तो इतना पेड़ पौधा एकदम छाई छाई स्कूले चल जाए जा। देखा यही से कहा जाला भैया कि पेड़ पौधा के भैया हमन के जीवन में बहुत उपयोगिता है।
1: ये भैया हो जुग जमाना देखा बदलत गल, जनसंख्या बढ़त गल, पेड़ पौधा के लोगन काट के जो ना अपन जगह बना लेना, कुछ लोग खेती लायक भी जगह बना लेना और साथे कुछ लोग भाई रहे बदे भी जगह बना लेना, कहे कि जनसंख्या बा बढ़त तो हिसाब से घर चाहिए।
0: भैया देखा जनसंख्या बढ़ले से ही ट्रैफिक बढ़त बा, इसे रोड रास्ता चौड़ा होत बा, तो जितना पेड़ पहले के लगल बड़ा रोड के किनारे वो तो भैया कटाई जात बड़ा। लेकिन हमहन के भैया यही उत्तरदायित्व तो बनाला कि अगर जहाँ पेड़ कटत है तो फिर किनारे ओके
1: हाँ
0: युद्ध स्तर पर अपन
1: देखा
0: लगावा।
1: भैया हो का कि सरकार का भी यह मनसा है कि अगर पेड़ कटत बा अगर लोगन के सहूलियत सुविधा देवे बदे तो वो साथे साथे लगावत भी है वही के आसपास, कि भाई धीरे धीरे हर से जोन कटल ओहर से वो बढ़ के जोन है खाता जोन है एक तरह से देखल जाए तो पूरा हो जाए।
0: आ देखा भैया पेड़ पौधा का हमारे जीवन में इतना उपयोगिता है कि देखें जहाँ बाढ़ एरिया बा वहाँ पेड़ आदमी लगाओ तो मिट्टी का भी कटान से भी पेड़ पौधा देखा रोकल।
1: बिल्कुल
0: आ
1: भैया।
0: पेड़ पौधा से देखा ग्लोबिंग वार्मिंग के भी समझ ला कि बहुत वो मिलला।
1: भैया
0: आ समझ लें कि अब हमन के पर्यावरण जो शुद्ध भैया हमन ऑक्सीजन लेते हैं जा जितना वायुमंडल में हमार फैलल धूल धक्कड़ है ओके वो अवशोषित कर देते हैं हमन के शुद्ध
1: अब
0: ऑक्सीजन
1: बिल्कुल
0: मिलत।
1: भैया देखा असल में कहल जाए तो अपने स्वास्थ्य बदे पेड़ पौधा बहुत जरूरी हन, आ तमाम तरह के जोन है दवाई देखल जाए तो यही पेड़ पौधन से जड़ी बूटीन से जोन है भैया बनत बाड़े, आ मनई के जोन है रोग ठीक होत बा आ मनई स्वस्थ रहत बाड़ तो एक जोन है अपने आसपास भी लगावे के है। साथे ये भी देखे के हो भैया एक चीज़ कि जैसे कि जंगल के देखल जाए तो पहले बड़ा घना दिखे, अब जोन है जैसे जैसे शहर का भी फैलाव होत गल लोगन के रहे का भी फैलाव होत गल आ तब वहाँ का जंगल देखवा भैया अब धीरे धीरे कटत बाढ़ पेड़ पालो वहाँ कम हो जात बा, तो एक ध्यान देवे के हुई कि अब देखा बरसात का मौसम आ गल है आ अब बरखा बुन्नी के समय में ये सबसे बढ़िया चीज़ बा कि अपने घरे के आसपास भी पेड़ लगावल जाए आ साथे साथे भैया अगर कहीं पहाड़ पे भी जगह बचत बा तो के जोन वहाँ लगावा आ यही बरसात में वो धय लही।
0: देखा भैया अब बात कीला पेड़ पौधा के बरसात में तो देखा हो पेड़ पौधा से हमन के फल से लेके फूल से लेके आ देखा भैया यही पेड़ पौधा से पहले जवनी भैया अब
1: भैया
0: तो भाई
1: घर छप्पर कुल छवात रहे
0: अब
1: भैया
0: तो
1: इमारती लकड़ी मिलत बा।
0: भैया अब तो ये जौन कृत्रिम व्यवस्था वाला पत्तल चल दिले पहले आप देखत हुई महुआ के पेड़ के पतई के पत्तल बनते कितनी
1: भैया
0: उबित
1: परासे का पत्तल आजो लोग जोन
0: कितना
1: है
0: भैया पेड़
1: पूजा
0: पौधा
1: हाँ
0: उपयोगी रहे।
1: पूजा पाठ में आजकल वही का जोन है मांग बा कि परास का भाई शुद्ध होत है पत्तल होकर ले आवा, तो पेड़ पौधन का महात्म्य तो बहुत हुआ बिरजू भैया।
0: आ इतना ना ये नंदू भैया
1: का भैया
0: देखा जब पेड़ सुखाओ जाता तो वो देखा लकड़ी के हमन के ईंधन के काम में भी आवत था।
1: बिल्कुल। आ एक चीज ये ध्यान देवे के भैया कि पेड़ के तो सुख ही ना देवे के
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: आपन वो जिंदगी पूरा करके जाए ये धरती से तब बढ़िया
0: भैया
1: बा।
0: देखा जब अरदुआ पूरा हो जाता जब वो सूख जाता तब वो जात जवात भी हमन के समय ला कि लाभ पेड़
1: काम
0: पौ देत
1: काम
0: है।
1: में आ जात बा भैया। एक तरह से देखल जाए तो अगर इमारती लकड़ी कभी हमन अगर लगा लेते बाड़ी जा तो हमनों किसान भाई लोगन बदे दे तो बड़ा काम का चीज़ ना बा भैया, वो
0: बहुत
1: पैसा
0: बहुत
1: जोन हो अलग से मिल जाए।
0: अच्छा ये भैया देखा पेड़ पेड़ पौधा अगर धरती पर ना रही तो न मानसून बनी न समय से बरसात हुई न जल जल संरक्षण हुई न धरती पर जीवन रहते।
1: ये
0: इसे
1: भैया
0: बहुत बड़ महात्म है भैया।
1: बिल्कुल भैया हो देखा ही से जोन है अपन प्रधानमंत्री भी कहना कि भाई अगर हो सके तो डाणे पर भैया 4 ठे 5 ठे पेड़ जोन है लगा दा आ वो समझ ला कि इमारती पेड़ लगावा महंगे लकड़ी वाला पेड़ लगा दा, ताकि अगर घरे कोनो काम बा या बेटी का ब्याह हुआ करे के बा भैया तो पैसा कौड़ी की जरूरत बा तो ओकरे बड़ होए तक जोन है वो तैयार हो जाए
0: ये भैया
1: पेड़।
0: देखा बात बतई तो होता लेकिन देखा वन महोत्सव इस सप्ताह चलत है जला भैया तो वन के भी समझला कि हमारे धरती पर

0: पूरे जीवन में बहुत अथवा बा। आ देखें हो कहल जाला ना कि वन अगर ना रही तो ये जौन जंगली जानवर हों बेचारे उनके कहाँ से आड़ छाँ मिली भैया।
1: हे
0: हैं
1: भैया हो देखा परिस्थिति के सही रखे बदे काहे कि ये धरती पर जितना लोग आला हैं सब लोग एक दूसरे से जुड़ल भैया, तब जा कर के ये जो सृष्टि बा बहुत बढ़िया तरीके से चली। अगर सब केहू एक दूसरे में संतुलन के स्थिति बना के सामंजस्य बना के चली हैं तो बहुत बढ़िया रही। ए बदे तो जंगल के भैया बहुत जरूरी है कि संरक्षित करा, आ जहाँ कम भैल बा जंगल के क्षेत्र वहाँ बढ़ावे का प्रयास करा।
0: एकदम भैया एकदम। आ हम तो कही लगी भैया देखा हो जंगल में जैसे वन बा तो के हरा पेड़ न काटा आ ओकर बचाव करा। आ ई हमन के ई खाली हमरे सरकार का ना उत्तरदायित्व तो है, ई हमन के पूरी जितना भी
1: भैया
0: जनजीवन ई धरती पर सबकर ई
1: ए भैया ई हमहन
0: उत्तरदायित्व
1: का
0: तो है।
1: सबकर नैतिक जिम्मेदारी भी बा कि जितना हमहन के मिलल गल बा समझला हमहन आए वाली पीढ़ी के भी वही तरह का ई धरती करके देवल जाए, तब तो बढ़िया बा। अब हमहन का आए वाली पीढ़ी गुण गाई कि अपन पुरखा पुरनिया देखा भैया ऐसन रहना कितना बढ़िया ई धरती अपने के देले हूँ। आ भाई देखा अगर जागरूक ना होल जाई तो आए वाले समय में स्थिति जो ना बड़ी खराब हुई। आज के समय में देखा होत का है कि कुल मौसम जलवायु में परिवर्तन हो जात बा।
0: देखा अब भैया यह दौ ना बरसत हुआ तो कितना सोचे पर आदमी मजबूर हो थे कि भैया लगत है प्रकृति से छेड़छाड़ होते का।
1: चला भैया अपन पंच लोग सब लोग जौन है बड़ा समझदार हूँ, आ एक कुल चीज़ का ध्यान रखी हैं। देखा एक चीज़ का औरू ध्यान हमन के रखे कि अपन गोरू चौवा जौन हमन पाली लाल
0: हाँ
1: भैया
0: भैया
1: तो
0: देखा
1: वो अपन घरे का परानी की तरह हुआ, सदस्य की तरह हुआ, तो इनके भी जौन भी कुछ समस्या हो तो ओकरे बदे बड़ा तत्पर रहे के हुई। तो ए में देखा अपने गुरु चौवन के जौन ई लंपी बीमारी रहल तो एकर कारण का होला, एकर लक्षण का होला, कैसे इसे बचल जाए
0: बचाव एकर कैसे
1: दुर्जुबिया,
0: करे।
1: तो यही विषय पे जौन है डॉक्टर मुदस्सिर अली हुआ तो उनसे जौन है सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया का बातचीत है बत कही है, ओके अपने भी सुन जाए पंच लोगों के सुनवावल जाए।
0: एकदम भैया सुनवा दा।
2: डॉक्टर मुदस्सर अली, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हुए चहनिया चंदौली में। हमन देखें खेती किसानी से कुछ समय निकाल करके चाहिला कि 4 पैसा का अतिरिक्त आमदनी भी हो जाए, ओकरे बदे पशुपालन वगैरह का भी काम करी ला। बाकी तक कबो कबो हमन के पशु जब बीमार हो जाना तो जौन आमदनी हुए के ओकरे जगह पर हमन के घरे से पैसा लग जाला, तो पशु हमन का स्वस्थ रहे और एकरे बदे हमन पूरा ध्यान तो रखबे करीला। बाकी तो समय समय पर कबो कबो जौन हमारे पशुओं को बीमारी भी आ जाले, जैसे कि देखे में आवला लंपी बीमारी, तो ई लंपी बीमारी के विषय में हम आपसे जानकारी चाहब कि ई का हो।
3: मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि लंपी बीमारी एक विषाणु जनित रोग है। तो ये विषाणुओं से फैलता है और इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 से 14 दिन तक में। तो ये वायरस का एक समय होता है, ये अपना समय पूरा करके अपना आप पशुओं से निकल जाता है
2: 9 से 14 दिन का काम मतलब माने 9 दिन के पहले रोग ठीक न हुई
3: ना।
2: और 14 दिन बाद ठीक भी हो जाए।
3: हाँ ठीक हो जाएगा, चाहे आप उसमें कितनी भी एंटीबायोटिक चलाएं या वो चलाएं, ये अपना समय पूरा करके ही जाएगा। जैसे जुकाम होता है हम लोग को, तो जुकाम 7 दिन का अगर जुकाम है तो आप कितनी भी एंटीबायोटिक खा लें 7 दिन के बाद ही ठीक होगा। उसी
2: अच्छा।
3: तरीके से ये विषाणु जनित रोग होता है, तो इसका एक समय होता है, तो अपना समय पूरा करके ही पशुओं से रोग बाहर निकलता है।
2: अच्छा, तो माने त्वचा से संबंधित बीमारी
3: जी
2: होले।
3: जैसा कि लंपी स्किन डिजीज है, त्वचा इसमें इन्वॉल्व है। पहला लक्षण इसका त्वचा पे आता है, इसमें 2 से 5 सेंटीमीटर के नोड्यूल बन जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें नोड्यूल बन जाते हैं,
2: माने
3: पूरे
2: गांठ
3: शरीर
2: पूरे
3: में
2: शरीर पर
3: गांठ
2: बन जाला।
3: बन जाते हैं, जिसका कुछ पशुओं में कम गांठ होती है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, और जिसकी इम्यूनिटी खराब होती है तो उसमें 100 से ज्यादा भी गांठे पड़ जाती हैं।
2: तो ये खाली दुधारू पशुओं के होला कि कुछ व्यावसायिक पशु भी हमन पाली ला तो ओके भी हो जाला।
3: ये सारे पशुओं में हो सकता है, नवजात पशुओं में भी हो जाएगा, दुधारू में भी, बिना दुधारू में भी, गाभिन में भी। गाभिन पशुओं में ज्यादा होता है क्योंकि उनकी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो कम होती है, इसलिए रोग उनको ज्यादा ग्रसित करता है, और बच्चों में भी ज्यादा ग्रसित करता है।
2: तो एकर एक बाह्य लक्षण था बताओ थो कि गांठ गांठ पड़ जाले और एकर का लक्षण उनके दिखाई देला पशुओं
3: पहला
2: के।
3: पहला लक्षण है कि शरीर पर गांठ इससे तो शुरुआत होती है, गांठों की संख्या बढ़ जाती है, 100 से 500 तक हो सकती है। और दूसरा है कि बुखार होता है 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फॉरनहाइट तक, और ये बुखार 9 से 14 दिन तक, कम से कम 7 दिन तो बुखार पशु में रहेगा, वो भी 24 घंटे बुखार रहेगा,
2: अच्छा
3: और कभी कभी पैरों में सूजन भी आ जाती है, दोनों

0: पैर में सूजन आ जाते हैं पशुओं में, जिसमें खुर से चलने में दिक्कत आती है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बीमारी हो कैसे चले? अच्छा,
0: ये हम लोग के भारतवर्ष में ये बीमारी 2019 से आई है और 2022 में इसका ब्रेकडाउन हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में बहुत पशु से मारे गए थे,
1: हाँ
0: तो उसके बाद ये पशु हर साल जब बीमारी आती है लगभग गर्मी के मौसम में, तो ये विषाणु से आती है और संक्रमण जो होता है मच्छरों से, किल्ली से, और जो पशुओं के लार है, खून है, इससे भी आपस में कांटेक्ट होने से संक्रमण एक पशु से दूसरे पशुओं में हो जाता है। कुछ जैसे कि हम लोग का बलटारे दुधारे होते हैं, वो घर घर जाके दूध निकालते हैं, तो स्वस्थ पशुओं जो इन्फेक्टेड पशुओं से दूध निकाला और स्वस्थ पशुओं को छुआ बिना सिर्फ साधारण पानी से ही वो हाथ धुलते हैं
1: उसे साफ ना हो पाई
0: तो
1: हाथ।
0: साफ नहीं हो पाता, उससे इसका वायरस मर नहीं पाता, जिससे कि स्वस्थ पशु में भी वो बीमारी फैला देते हैं।
1: तो माने हाथ के पहले तो बढ़िया से सफाई करके तब
0: जी
1: दुधारू
0: हाँ,
1: पशुओं के दुहे के
0: बढ़िया से
1: चाहिए।
0: वो सफाई कर ले, कोई भी डिसइंफेक्टेंट ले ले उनको, जिससे वो जो है थन को साफ कर रहे हैं या धुल रहे हैं, तो उसमें वो डाल दिया जाए बाल्टी में,
1: अच्छा।
0: और डिसइंफेक्टेंट के बाद में वो सारे विषाणु उसके मर जाते हैं, फिर आपका पशु सुरक्षित रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ई लंपी बीमारी कोनो विशेष मौसम में होले कि माने कभी भी हो सकले?
0: नहीं, इसका विशेष मौसम होता है, जैसे कि ज्यादा जो तापमान बढ़ जाए और ज्यादा ह्यूमिड आर्द्रता बढ़ जाती है मौसम में, जैसे जून से लेकर अक्टूबर के बीच का मौसम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सबसे अच्छा विषाणु फैलने के सबसे ज्यादा होता है। अभी तक जो बीमारी का प्रकोप देखा गया इसी महीने में देखा गया है, बाकी ना ठंडी में दिखती है ना ही बहुत ज्यादा तापमान, जैसे लू का मौसम मई अप्रैल में होती है उसमें भी बीमारी अभी तक देखी नहीं गई है।
1: तो कहे का मतलब कि ये रोग पहले तो आप बताओ थोड़ा कि संक्रामक हो,
0: जी
1: है ना, एक दूसरे पशु से मतलब संपर्क में अइले से हो जाला, और इनके खान पान से भी का कुछ ही रोग फैल सकल है?
0: खान, अगर एक जैसे पशु एक ही नादी में कई पशु खा रहे हैं, तो उनका मुंह से लार अगर गिर रहा है उसमें, तो दूसरा स्वस्थ पशु भी उससे संक्रमित हो जाता है, तो उनके खान पान से भी वो पशु जो आपका रोगी हो गया है उसको आपको अलग कर देना है, उसका दाना पानी सब अलग कर देना है,
1: अच्छा, बाकी पशुओं से उन्हें अलग कर
0: अलग
1: दिए।
0: कर दिया जाए।
1: अच्छा, तो क्या कुछ दूरी पर बांधे उन्हें कि मतलब वही
0: हाँ,
1: पशुशाला में
0: थोड़ा
1: रख सकीला?
0: अगर आपके पास जगह है, अगर शेड अलग अलग है तो अलग ही शेड कर दिया जाए, अगर नहीं शेड का व्यवस्था हो पा रही है तो कम से कम कुछ दूरी पे करके उनका नादी वगैरह बदल दीजिए, उनकी अलग नादी कर दीजिए, स्वस्थ पशु से दूर कर दीजिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ठीक भइले के बादों का उन्हें अलग रखे क्या कुछ दिन तक कि माने वो बाकी पशुओं के
0: ठीक
1: साथ रह
0: होने के बाद
1: सकेला?
0: भी जो उसके नूड्यूल बनते हैं, जो आप फोड़ा बोलते हैं उसको, तो वो सूखने के बाद में उसके पपड़ी छोड़ते हैं,
1: अच्छा,
0: तो वो पपड़ी भी वायरस, डेड वायरस होते हैं, वो इन्फेक्शन फैलाने के वो चांस होता है। तो कुछ दिन तक उसको कम से कम, अगर जो एक पशु को रोग आ गया है तो कम से कम उसको 20 से 25 दिन आप अलग कर दीजिए।
1: तो ये बतावे कि एक लक्षण तो आप बताऊंगा कि उनके शरीर पर जो है गांठ कुल पड़ जाले, और एकरे अलावा उनके दिनचर्या पर का प्रभाव पड़ला, खान पान पर, रहन सहन पर?
0: देखिए, गांठ पड़ जाती है, दूसरा है कि बुखार पशु में रहता है पूरा, कम से कम 1 हफ्ता रहता है, 104 से 106 डिग्री तक बुखार जाता है, जिससे उनका दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है, भूख
1: अच्छा।
0: भी कम हो जाती है,
1: माने खाना पीना कम के
0: खाना
1: नहीं
0: भी
1: है?
0: जाता है। जो जर्सी टाइप की नस्ल की गाय होती हैं वो वैसे भी उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जब इतना टेम्परेचर होता है तो बहुत हाँफने लगती हैं, जिससे उनका मुंह से लार गिरने लगता है बहुत अत्यधिक, उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी उस टाइम बहुत ज्यादा पिलाना चाहिए उन पशुओं को, तो
1: अच्छा।
0: उनका दूध भी अगर अगर नहीं हम ये मैनेज कर पा रहे हैं तो दूध बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो कि 18-20 लीटर की गाय आपका 2 लीटर 3 लीटर पर आ जाती है, इतना दूध का कमी आ जाती है।
1: तो ये बतावे कि जैसे आप बताऊंगा कि विशेष मौसम में एकर प्रभाव होला, तो वो मौसम के प्रारंभ हुए से पहले का कुछ टीकाकरण वगैरह उन्हें कर जा
0: जी,
1: सकला?
0: टीका किया जा सकता है,
1: तो कहीं से
0: हम
1: बचाव हो सकला कुछ?
0: इससे बचाव बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, टीकाकरण ही इसका एक उपाय है, जो भी विषाणु जनित रोग होते हैं उसका टीकाकरण कराया जाता है। अभी क्योंकि लंपी बीमारी बहुत पुरानी नहीं है, इसका टीकाकरण पर रिसर्च चल रही है, तो ये हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में हम लोग का टीका लगाया जा रहा है, इसको हम लोग टीका इसको गर्मी आने से 15 दिन पहले जून में या मई में हम लोग टीका लगवा देते हैं। जिन किसान भाइयों के पास टीका नहीं लग पा रहा है, जब कभी कभी होता है कि वो किसान भाई बहुत दूर रहता है आबादी से, ऐसा भी ये पशुओं को लेकर रहता है, वहां संपर्क नहीं हो पाता है, तो वो निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करके टीका लगवा लें।
1: अच्छा,
0: और
1: तो ये टीका बदे के कुछ उन्हें भुगतान भी करे के होला,
0: नहीं, टीका बिल्कुल निःशुल्क है।
1: निःशुल्क लगाला?
0: जी
1: अच्छा, जौन किसान भैया लोगन से मान ला पशु

0: चिकित्सालय बहुत दूर हो, ना ही जा पावत हुआ, पशु भी बीमार बा, ना ही लेके जा पावत हुआ, उनके बदे का सुविधा हो सरकार की तरफ से?
1: सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक मोबाइल वेटनरी यूनिट चलती है जिसका नंबर है 1962-1962। ये हमारे किसान भाइयों के द्वार पर जाके पशुओं का इलाज होता है, और अगर टीका भी नहीं लगाए तो ये हम लोग कैसे टीका लेके पशु चिकित्सालय से वो किसान भाई को टीका भी लगा देते हैं। तो अगर जो किसान भाई अपने पशुओं को नहीं लेके आ पा रहे हैं पशु चिकित्सालय पर या दूर पे हैं तो ये 1962 का वो उपयोग कर सकते हैं।
0: तो ये जो घरे आके टीका लगाई है तो एकरे बदे भी
1: नहीं,
0: निशुल्क होई?
1: ये बिल्कुल निशुल्क है।
0: अच्छा, घरे भी निशुल्क
1: हाँ,
0: लगी।
1: घर पे भी निशुल्क लगेगा।
0: तो ये बतावे कि अगर मान ले कि रोग से तो पहले बचाव कैसे करें, हम ये जानकारी चाहब कि कौन कौन उपचार करें जैसे कि उनकर पशु जो स्वस्थ रहें और ये लंपी बीमारी न हो पावे।
1: रोग से उपचार करने के लिए सबसे पहले जो लक्षण हैं उस पर हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विषाणु जनित रोग है तो इसमें बहुत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहला काम है स्किन का संबंधित जितने भी विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, सेलेनियम, इसकी विटामिन इनको शुरू से जिस दिन से रोग शुरू हो गया उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए, ताकि स्किन जो है डैमेज नहीं होने पाए। स्किन डैमेज हो जाती है तो उसमें घाव बन जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। अगर हम शुरू से किसान भाई इसको शुरू कर देगा पहले दिन से तो स्किन के अंदर में उसकी फ्रेजिलिटी खराब नहीं होती है, जिससे कि वो डैमेज नहीं हो पाती। दूसरा है बुखार के लिए हम लोग पैरासीटामोल के टैबलेट चला सकते हैं, जैसे जो पैरासीटामोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं 650 mg साल्ट, वही है, एक ही साल्ट होता है, वही साल्ट पशुओं में आप एक टैबलेट 50 किलो के अनुमान से, यानी अगर 300 किलो का पशु है किसान भाई का तो उसको 5 टैबलेट दे सकता है। सुबह दे दे 5 टैबलेट, 5 टैबलेट शाम को दे दे, तो उसको बुखार से उसको राहत रहेगी, तो पशु बहुत अपने आप को कंफर्ट में फील करेगा। एक विटामिन चला दीजिए, और जो भी वो खा रहा है उसको खाने में भी रोक टोक नहीं करना है, जो वो खा रहा है पानी पी रहा है उसको पीने दें। ऐसी अवस्था में वैसे भी चारा कम कर देता है, लेकिन जो भी वो खा रहा है आराम से हरा चारा अगर उपलब्ध है हरा चारा दीजिए उसको, और अगर जो भी किसान भाइयों के पास में जो मौसम के हिसाब से चारा उपलब्ध है वो उसको दें।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे इनकर जो गांठ हो अगर मान ले घाव के रूप में हो गल हो तो ओकरे बदे का करें, कैसे उपचार करें?
1: अगर गांठों में घाव बन गया है तो फिर उसके बाद में मक्खियां बैठती हैं जिससे मैगेट आ जाते हैं और कीड़े पड़ने के चांस हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसान भाई सबसे पहले उस घाव को धुले, धुलने के लिए घरेलू में घर में उनके पास फिटकरी है या नीम की पत्ती है, उसका वो पानी में घोल के हल्का सा गुनगुन पानी से, ल्यूक वार्म के वाटर कहते हैं, गुनगुन पानी से लेकर धुल दें खूब अच्छे से। फिर देसी उपचार में आप घर में अगर हल्दी है, हल्दी 3 हिस्सा हल्दी, 1 हिस्सा चूना का पेस्ट बना ले सरसों के तेल में, उसको भी घाव में लगा सकते हैं। हाँ,
0: तो
1: नहीं
0: लगावा
1: तो
0: कोई कोनो चीज से धो के साफ करे कोई घाव?
1: हाँ, घाव को साफ करने के लिए वो मैंने बताया नीम का पत्ती का पानी का इस्तेमाल कर लें, फिटकरी पानी का इस्तेमाल कर लें, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट हो उसका ले लें। हम लोग अस्पताल पे आ जाएं, हम लोग के पास पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है वो दे देते हैं 1 ग्राम का, ठीक है। जो भी अस्पताल के निकटतम सुविधा में जो भी पशुपालक हो आसपास तो वो जरूर जाए वहां पे, और हर अस्पताल में कुछ ना कुछ लंबी के लिए अभी तो स्पेशल दवा आ गई है सब जगह पे, तो सब उपलब्ध मिल जाएगी उनको। वो लेके घाव को धोले, फिर उसके बाद में ये घाव में भरने के लिए, क्योंकि वो खुला हुआ घाव रहता है उसमें मक्खी मैगट डाल देती है, तो उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के आप डाल दीजिए, या कोई भी एक बोरिक एसिड आती है, बोरिक एसिड को भी आप घी वगैरह का पेस्ट बना के उसमें लगा सकते हैं। हाँ, जिंक सल्फाइड का भी एक ऐसा पाउडर रहता है सफेद रंग का, उसको भी घाव में जो है घी के साथ में लगा के लगाया जा सकता है,
0: माने मक्खी बैठे से बचावे के हो?
1: बचाना है, और घाव में कुछ ना कुछ लगा रहे जिससे कि ऊपर से कोई मक्खी है या टाइबिनस फ्लाई है ये सब उस पर अपना वुन या बीट नहीं डाल दें, जिससे कीड़े वगैरह ना पड़े उस घाव में, क्योंकि कीड़े पड़ेंगे वो कीड़े घाव को गहरा करते चले जाएंगे।
0: डॉक्टर साहब एक बात और जानल चाहब कि काई प्राण घातक भी होला, जैसे कि आप बताए कि 9 से 14 दिन तक का एकर जो हम याद होले, तो का खाली विशेष सतर्कता अगर बरते हैं तो 14 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगी?
1: देखिए 10 में से 8 पशु तो अपने आप ठीक हो जाता है, अगर किसान भाई जितने बातें बताई गई हैं उस पर ध्यान देगा तो 10 से 8 पशु को खुद ही ठीक से कर सकता है। कुछ कुछ पशुओं में जैसे अब की बार कुछ स्ट्रेन आया है BHV2 बोवाइन हर्पीस वायरस 2 का, इसके लक्षण जो है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिखाई दी है जैसे फेफड़ों में।
0: अच्छा,
1: तो उस कंडीशन में क्या है कि ब्रिस्केट एरिमा जिसको लर्लीप किसान भाई कहते हैं वहां पे पानी आ जाता है, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते
0: फूल जाते
1: हैं वहां पे फूल जाता है, सूजन आ जाती है।
0: अच्छा।
1: और सांसें बहुत तेज है, फेफड़े वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

0: जाते हैं निमोनिया के जैसे लक्षण। तो ये अगर ऐसी समस्या उसको दिखाई दे रही है तो वो निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज करवाए। वहां पे फिर एंटीबायोटिक देना जरूरी हो जाता है कि उसको ठीक करके फेफड़े में जो इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करे। ऐसे ही केस आगे चल गए, अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो फिर पशु जो पशु हो वो डेथ भी चली जाती है, मृत्यु भी हो सकता है। इसमें 1-2% तक मृत्यु अभी तक जो देखी गई है इस बीमारी में हो जाती है। 2% तक की डेथ रेट है इसमें।
1: डॉक्टर चलो चलावत एक बात और आपसे जानल चाहब कि जौन हमारे दुधारू पशु हो तो उनकर दूध निकाले के चाहिए कि नहीं, और दूध जौन हो हम लोग अगर सेवन करते हैं तो का हम लोग के ऊपर भी कोकर कुछ दुष्प्रभाव हो सकला?
0: नहीं, जो भी अगर दुधारू पशु है दूध तो निकालना ही है। अगर पशु में आप दूध नहीं निकालेंगे तो उसको थनेला रोग के होने का चांस बढ़ जाता है, तो उसको दूध निकालिए। दूसरी बात है ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। जूनोटिक बीमारी कहते हैं कि जो बीमारी पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ये नहीं है, तो हम लोग इससे संक्रमित तो नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसका वायरस जो होता है वो 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो भी दूध लेते हैं उसको उबाल के ही पीते हैं तो वैसे भी वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे को दूध पिला रही है गाय, तो उस बच्चे को होने का चांस बढ़ता है। तो उसमें आप ऐसा करें कि उसको दूध निकाल के बॉयल करके और निपल बॉटल से अलग से जो बॉटल आती है बच्चों की उससे दूध पिलाया गया, जब तक कि वो रोगित है, पशु में रोग है तब तक दीजिए, नहीं तो वो बच्चों को भी संक्रमण होने का चांस बढ़ जाएगा।
1: तो डॉक्टर मुदस्सर अली भैया, आप जो हमारे पंचायती में ही ना इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भैया लोगों के देना कि लंपी बीमारी से अपने पशुओं के कैसे बचा सकना, एक बदले आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया, देखा भैया बड़ा निम्न बत कही, सुने के मिलल है, हमारो सुन ले पंच भैया लोग भी सुन रहे हैं। पशुओं की लंपी बीमारी में कारण लक्षण और बचाव के बारे में डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर अली से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया बतियोल हाँ
3: फरिया के बतियो ना भैया।
2: हाँ भैया,
3: बिरते बिरते पूछ लेना कि का चीज हो, कौन बीमारी हो सकत हो लंपी के साथे, और कौन बीमारी जुड़ल रह सकत, कैसे बचाव करें, का ध्यान अपने गोरु चौवन का मनई लोग दे, तो ई बात कही तो हो गल हो।
2: हाँ भैया,
3: अब बिरजू भैया ना अपने पंचायती में हो जाए गीत गौनई, आ एकरे बदे जौन है ना विश्वनाथ और उनके साथी लोगन का ई गौनई है, आ इके सुनल जाए, तनी मन मनसान हो
2: पंच लोग के भी भैया सुनवा दा।

0: भैया देखा किसनिया मांगे किसान भैया माटी, विश्वनाथ और साथी भैया के रहा ले गौनाई।
1: ए भैया हो देखा ई माटी वाकई में किसानी मांगे था। किसानी का मतलब हो भैया मेहनत।
0: देखा कितना मीठ गौनाई भई ले हो, बड़ा अच्छा लगला। तो ये
1: भैया
0: नंदू भैया,
1: हाँ बिल्कुल।
0: देखा भैया बिहाने के भी कार्यक्रम के बारे में बता देवल जाओ। तो बिहाने 6:05 पर खेती की बातें में विषय रही ज्वार की खेती, आ ये पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: तो बिरजू भैया अपने पंच लोगन के बतावल जाए कि आपन जोन कृषि जगत कार्यक्रम ई हुई संध्या के 6:30 पे आ एम्मा भाई देखा अनुभव खेती में अपने प्रगतिशील किसानन का का रहल ह। तो इंद्रसेन सिंह किसान हुआ और उनसे बतेलो राजेश नारायण भैया। तो वो जोन है अपन अनुभव बतइया आ देखा कुल बोलत बतियावत न हो बिरजू भैया।
0: देखा समय अब हो गेल भैया,
1: हाँ
0: तब
1: चलत
0: चले
1: हैया
0: के बारे हो गेल
1: पंचो
0: पंचो। राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पेंटर बाबू का गीत। इस गीत को लिखा है मनोज कुमार ने और संगीत है उत्तम जगदीश का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म कारवां से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म आप आए बाहर ऐसे। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार अखिलेश गौतम निवासी सिसवारा पोस्ट नरवे थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ के निवासी हैं। अखिलेश गौतम 1 अप्रैल सन 2025 से लापता हैं। अखिलेश गौतम के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेते हैं। इकेरा बदन है, रंग गेहुआ है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि अखिलेश गौतम के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाना या फिर थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार हसीन अहमद निवासी छोरा खुड़िया का मैदान जैतपुरा वाराणसी, ये दिसंबर सन 2025 से लापता है। हसीन अहमद के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 34 वर्ष, रंग साफ है,

मेरा गोल है, ये ग्रीन कलर का टी शर्ट और जीन्स पहने हुए हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि आपको हसीन अहमद के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन

0: निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 151,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी राम जी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
5: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ.

0: प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
5: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अवतार का गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म चलते चलते से। गीतकार हैं अमित खन्ना और संगीतकार बप्पी लहरी।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आई मिलन की बेला से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

आए दिन बहार के। जी हाँ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। इसी फिल्म से आवाज़ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म बंदिश से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

मीडियम वेव 241.5 चैन मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं दिव्यांशी द्विवेदी। आइए पहले सुनते हैं इनकी आवाज में सूरदास की ये रचना।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी को वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं दिव्यांशी द्विवेदी के गाए भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन,

दिव्यांशी द्विवेदी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म राजकुमार का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जीत से, आवाज सोनू निगम और अलका याग्निक की है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म धरती से। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म चांदनी से आवाज़ लता मंगेशकर और बाबला मेहता की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

आज और कल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इसी फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रवि का।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज रात 10:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मीडियम वेव 241.5 पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजने वाले हैं, 8:45 होने वाले हैं। कुछ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल

0: और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम

0: देशीय संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आंकड़े

0: जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का कई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और

0: Paksha, Akashvani News, Srinagar.
1: The southwest monsoon has further advanced into the entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with a possibility of light rain over the next 24 hours. In view of continuous rainfall in Uttarakhand's Pithoragarh district, the administration has suspended the issuance of inner line permits for the Adi Kailash and Om Parvat Yatra to ensure the safety of pilgrims. On to sports. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-hosts US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ्फुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि

0: अलिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए तीन तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और तआवुन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मसनूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हमनसब सनाई तकाईशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस वाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ वाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हमनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतेहाल के माबैन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनद के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उंसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ

0: वापसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अल-अक़वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, आवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहले जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी अहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकामात पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर CCTV कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए RFID ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

0: इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा, जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन।

नुसरत फ़तेह अली खां की गाय इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गज़लों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अमीन साबरी, फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला की आवाज़ में फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म सरफरोश से। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने और धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म कुर्बान से। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चैर मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन।

0: I am Megha and joining me in studio as my co-host is Dharmendra Mani Rajesh.
1: जी मेघा, और अब हम अपने मेहमानों का भी परिचय करा दें. हमारे साथ आज हैं ख्याति गुलानी, पूर्व क्रिकेटर, जिशानुल यकीन, पूर्व क्रिकेटर, और जी राजा रमन, वरिष्ठ खेल पत्रकार. तो सवालों की शुरुआत राजा आपसे ही.
2: जी,
1: टॉस की आज के मैच में कितनी बड़ी और क्या भूमिका रहने वाली है, इस बात को देखते हुए कि इस विश्व कप में द ओवल मैदान पर जो इससे पहले दो मैच हुए हैं, दोनों चेस करने वाली टीमें जीते हैं.
2: मेरा अपना मानना है धर्मेंद्र के टॉस का कोई ज़्यादा मायना नहीं रहेगा. सेमीफाइनल है, बात आ जाएगी नर्व पे, कौन सी टीम बेहतर अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी और अच्छा क्रिकेट खेलेगी, उन पे वो डिसाइड करेगा. चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या गेंदबाजी करो, इट बी अ कीन कॉन्टेस्ट. दोनों अच्छी टीम है और इट बी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर. आप बाद में पूछेंगे जरूर कि आप बताओ कौन जीतेगा, लेकिन बताना बहुत मुश्किल काम होगा ये.
0: थैंक्स फॉर प्रॉम्प्टिंग अस राज. वी वुड मेक श्योर दैट वी पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ ख्याति, वी हैव सीन विद द साउथ अफ्रीकन टीम, दे डिडंट हैव इट इजी इन द ग्रुप स्टेज. इनफैक्ट अगेंस्ट बांग्लादेश टू दे स्टार्टेड बिफोर रजिस्टरिंग अ 4-wicket विन.
3: Yeah, I mean, they had few lapses there in their group, but I'm pretty sure that they are known for, you know, as a chokers also, and they can be as well. So let's it.
0: Absolutely, we'd wait and watch. Or toss ke liye dono kaptan tayar hai, Wolfart or Brunt.
4: Referee's ready, Nat. If you could get the coin, please, and give it a spin, please, Nat.
5: Tails.
6: Tails. Cool. It's a tail.
4: Laura, you've won the toss. What are you going to do and why?
5: We're going to have a ball first today. I think it's quite a hard ground to defend later on. So, yeah, hopefully we can chase later.
4: What is your team news?
5: We've got one change. Sunay's coming in for Dane.
4: Thinking behind that change?
5: Oh, just a tactical decision. We just think it would be the best matchup today.
4: You've gone unbeaten since that first game. Do you feel now you're playing your best cricket or still room for improvement?
5: Still room for improvement. But I think that's an exciting thing, is that we found ourselves in the semis without having that perfect game yet. So today's a great time to do that.
4: And you and your team have some excellent memories against this particular England side.

0: in this very stage.
1: Yes, definitely. They're known to upsetting any tournament. Form is yet to come in. I mean, especially if you talk about Wolvat, she's yet to give her best. I guess, I mean, they can do anything, and any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, this English team, it looks very balanced at the moment. And they're giving their best. Their batters are contributing really well. Their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side. So let's see who plays well today.
2: जी, और कंसिस्टेंसी जो है वो इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत पक्ष उसका रहा है. और ऐसे में जिशान, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नज़दीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
3: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा. और ख़ासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये अच्छा मैच होने वाला है. ख़ासकर जहाँ तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस और जो पास्ट चीज़ें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, ख़ासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका पेस बॉलर्स की खासकर. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन, जो बैट्सवुमेन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो ख़ासकर जो पेस बॉलर्स, पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नज़र आना है, वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
0: So battle within the war to look ahead to. Now, Raja, we've seen with England the way they are functioning like a well-oiled machine. Charlie Dean was captaining in the games in between when Siva Brunt was injured. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
4: I think that's the hallmark of a good team, Megha. And any team that plays as well as England has done should fancy it.

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन आया।

0: रंग तरंग
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना।

करना है ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन